प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। सरकार ने गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करने पर कड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने सड़क नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी चालक जो फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़े पाया जाएगा उसे पहले की तरह 3 से 6 पॉइंट्स नहीं बल्कि 5 से 10 पॉइंट्स की सजा मिलेगी। ये फैसला उस समय आया है जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग ने नए पॉइंट सिस्टम के लागू होने के बाद पहली रिपोर्ट जारी की है। और अंतर मंत्रालय समिति ने फैसला किया है कि ईद उल अदा 2026 के लिए बीफ का दाम 186 रुपये प्रति किलो तय हुआ है। आयातकों की 220 रुपये की मांग के बावजूद मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि ये रेट आम जनता के फायदे के लिए रखा गया है और ये रेट त्यौहार के 10 दिन बाद तक चलेगा। मॉरिशस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने कल दोपहर पर्यावरण मंत्रालय को बताया कि एंजन लिमिटेड की एक पाइपलाइन से भारी तेल लीक हो रहा है। ये लापे नाले के पास है और एमपीए ने बचाव शुरू कर दिया है। लातानी नदी के मुहाने पर लगभग 100 मीटर लंबी तैरती बार लगाई गई है। एंजन लिमिटेड ने तेल को रोकने और सोखने यानी अब्सॉर्ब करने के लिए विशेष सामग्री लगाई है। और विदेश में चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को सीधे तकनीकी सहयोग दिया था। ये खुलासा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। और अंत में मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो कल रविवार 10 मई को सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। और वैसे दक्षिण की ओर पाई जा रही सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल पाथों पर। बाद में मौसम में सुधार आएगा और रात्रि के समय आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल पाथों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 4 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी, इसलिए मछेरों को, प्लेजर बोट वालों को और जनता को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 6:38 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 5:44 पर।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti।
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق

नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मनोरंजन रेडियो की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। सवाल खैर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। रामा साहब तकनीकी मदद दे रहे हैं। आज की इस नशरियात में जन्नत के बारे में चंद बातें आपके सामने पेश करेंगे, इस उम्मीद से कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा। सूरह बनी इसराइल उर्दू तर्जुमा। नमाज का अहतमाम रखो, जवाल आफ्ताब के औकात से लेकर शब के तारीख होने तक, और ख़ास कर फ़जर की किराअत का। बेशक फ़जर की किराअत बड़ी ही हुजूरी की चीज़ है। तिलावत कुरान मजीद समाअत फरमाएं।

सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई खातून ज़मीन की तरफ झांक भी ले तो ज़मीन व आसमान अपनी तमाम वसअतों के साथ मुनव्वर हो जाएं और खुशबू से मुअत्तर हो जाएं, उसके सर का दुपट्टा भी दुनिया और उसकी सारी चीज़ों से बढ़कर है।

सनन तिर्मिज़ी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर न दूँ जो जहन्नम की आग पर या जहन्नम की आग उन पर हराम है? जहन्नम की आग उस शख्स पर हराम है जो लोगों के करीब रहने वाला है, आसानी करने वाला है और नर्म अखलाक का मालिक है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले हर जुमे के रोज़ अल्लाह से मुलाकात करेंगे। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। सही अल-बुखारी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया।

कसा काय मंडळी।

भक्ति में शक्ति। सभी श्रोताओं को विनिता की ओर से सादर नमस्ते। रेडियो मनोरंजन RN3 पर आपका स्वागत है। कार्यक्रम यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं भक्ति में शक्ति। तो श्रोताओं, कहते हैं कि हर सुबह काम से पहले गणेश जी का स्मरण करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उनकी कृपा से मन को शांति और जीवन को सही दिशा मिलती है। तो चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं।

प्रिय श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्तिमय शक्ति। वैसे तो सूर्यदेव को ऊर्जा, जीवन और पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है। उनकी रोशनी सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि हमारे मन को भी जगमगाती है। कहते हैं जो व्यक्ति रोज सूर्यदेव को जल अर्पित करता है उसके जीवन में नई उम्मीद और नई ताकत आती है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपने विघ्नहर्ता से आशीर्वाद मांग लिया होगा। तो लगे हाथ आप लोग हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम भी कर लीजिए और थोड़ी सी रोशनी अपनी जीवन में ले आइए।

तो श्रोताओं, आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम शनि देव की पूजा करते हैं और भक्ति में शक्ति कार्यक्रम है और हम शनि देव को याद ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वे तो न्याय के देवता माने जाते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते बल्कि हमें हमारे कर्मों का सच दिखाते हैं। आज के दिन अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, अच्छे कर्म करें और भगवान का नाम लें तो मन को अलग ही शांति मिलती है। चलिए हाथ जोड़कर शनिदेव को कहते हैं, हे शनि महाराज, हम पर अपना कृपा बनाए रखना और हमसे कभी भी कोई कुकर्म न कराना और हमारे अच्छे कर्मों की हमारे अच्छे फल देना।

रेडियो मनोरंजन RM3 पर मैं वेदिता आप सबों का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। जी हाँ दोस्तों, चलिए यहाँ पर अब हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम और दिव्य बनाने के लिए अब हनुमान जी की भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। वैसे तो हनुमान जी बल, बुद्धि और हिम्मत के प्रतीक हैं। जब भी हम डर या परेशानी महसूस करते हैं तो हम दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हनुमान जी अपने भक्तों के सारे संकट दूर करते हैं। तो चलिए अभी इस सुबह हम उनको याद करते हैं, बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा हिम्मत और सही रास्ता दिखाएं।

हनुमान जी का नाम लें और वहाँ राम जी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो भी कार्यक्रम जब भक्ति में शक्ति चल रही हो। भगवान श्री राम हमें मर्यादा, सच्चाई और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं श्रोताओं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर मन में विश्वास हो तो रास्ता आसान हो ही जाता है। और इस शनिवार चलिए हम श्री राम की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे और उनसे यही विनती करेंगे कि हमारे जीवन में प्रेम, शांति और खुशियाँ बनी रहे।

तो प्रिय श्रोताओं, आप इस समय रेडियो मनोरंजन RN3 पर वेदिता का साथ दे रही हैं। प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए भक्ति में शक्ति। जी हाँ, राम जी को तो हमने याद कर ही लिया, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि वे विष्णु अवतार हैं। जहाँ तक कि हमारे जो कृष्ण हैं, वो भी तो विष्णु अवतार ही हैं। विष्णु भगवान धरती पर आते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, दुख आए जीवन में तो कैसे लड़ना चाहिए, कैसे साहस से काम लेना चाहिए और कैसे धैर्य रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा।

प्रिय श्रोताओं, आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं आपका स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन और M3 पर। और भक्ति में शक्ति कार्यक्रम हो तो एक ऐसी शक्ति जिसके बिना शिव शव बन जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस माता पार्वती की जिनके पति हैं शिव शंकर भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। और शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं, आपने देखा होगा जब हम पूजा करते हैं तो हम उनको क्या अर्पण करते हैं। वैसे शिव जी कुछ भी नहीं मानते, वो कहते हैं जो मनुष्य को पसंद नहीं है ना, जो किसी को नहीं चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। इसीलिए तो वो धतूरे का फूल कहते हैं, गुलाब तुम रखो धतूरे का फूल मुझे दे दो, चंदन तुम रखो भस्म मुझे दे दो, है ना। तो शिव जी को वो सारी चीज़ें पसंद है जो हम धिक्कार देते हैं। तो उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि आप चाहे किसी को कितना भी धिक्कारो, लेकिन उसकी जगह कहीं ना कहीं होगी और उनको उनका सही जो गुरु है, उनका जो सही जीवन साथी है, उनको अवश्य मिलता है। तो चलिए, हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना होगा। आप भगवान को किस रूप में भी उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे आप भी अपना आशीर्वाद जरूर बनाएंगे। इसी के साथ श्रोताओं, चलिए हम अगले भजन के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत प्यार से सुना आपने हमारा कार्यक्रम। विदिता को आज्ञा दीजिए। शुभ दिन, नमस्कार।

风吹日常，乐伴时光，暂时抛开琐碎纷扰，让舒缓音符抚平心绪。愿每一段旋律都能给您片刻温柔与放松。

0: आज फिर से सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ तीना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। सरकार ने गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करने पर कड़ा कदम उठाया है। मंत्री परिषद ने सड़क नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी चालक जो फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़े पाया जाएगा उसे पहले की तरह 3 से 6 पॉइंट्स नहीं बल्कि 5 से 10 पॉइंट्स की सजा मिलेगी। ये फैसला उस समय आया है जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग ने नए पेनाल्टी पॉइंट्स सिस्टम के लागू होने के बाद पहली रिपोर्ट जारी की। सरकारी सेवा मंत्रालय में बदलाव हुआ है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार डॉक्टर धनंजय कावल ने कल शुक्रवार 8 मई को तुरंत सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। उनके पास अभी भी 4 साल की सेवा बाकी थी। इस फैसले के बाद शकुंतला देवी गजाधर नौबत को सरकारी सेवा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वे पहले स्थानीय प्रशासन मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही थी। इस जल्दी सेवानिवृत्ति का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ये कदम कुछ दिन पहले जारी सर्कुलर के विवाद के बाद आया। सर्कुलर में सरकारी काम के नए टेलीवर्क नियम और फ्लेक्सिबल आवर्स बताए गए थे। इस दस्तावेज पर डॉक्टर धनंजय कावल का हस्ताक्षर था। अब सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकलिंग की बात करें। मॉरिशस में प्लास्टिक रिसाइकलिंग में विशेषज्ञ कंपनी DKD प्लास्टिक पाइप्स आज इलाकाई स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि उसने 20 से अधिक वर्षों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की है। ये पहल इंडियन ओशन कमीशन के एक्सप्लोर प्रोजेक्ट के तहत समर्थित है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना है। इस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए कॉल फॉर प्रोजेक्ट्स में सैम्बिया में एक फील्ड विजिट आयोजित की गई ताकि प्रतिभागी रिसाइकलिंग प्रोडक्शन लाइन्स को नज़दीक से देख सके। लगभग एक हफ्ते बाद अपने नए आंदोलन का नाम बदलने के बाद पुल बिरांजे आधिकारिक रूप से फ्रॉन्ट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस को इस शनिवार लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर समर्थकों को दिन के 2:30 बजे वाकुआ फिनिक्स के नगर पालिका हॉल में एकत्र होने के लिए कहा गया है। FMP में सदस्यता के लिए आवेदन जारी है। विदेश में अमरीका की स्पिरिट एयरलाइंस पर एक डिमेंशिया पीड़ित बुजुर्ग यात्री को एयरपोर्ट पर असहाय छोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। बुजुर्ग व्यक्ति बाद में रास्ता भटककर हाईवे पर पहुंच गए जहां कई वाहनों की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में परिवार ने एयरलाइन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। सुफिकुंजी नंबर एक वाकुआ में 60 साल की 60 years old की श्रीमती राधा हावती रामदनी पैदाइश नाम वुमेड जो मुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर सुफिकुंजी नंबर एक वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए थॉम अमेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: घड़ी मिला लीजिए, दिन के 12:04 हुए हैं।
6: सुहाना सफर।
5: हमारे प्यारे प्यारे संगीत लवर्स को अनीता का हेलो नमस्कार एंड ढेर सारा प्यार स्वीकार कीजिए। अभी आप सब RM3 से जुड़े हुए हैं जहां आप सुन रहे हैं एहसास से भरा, यादों से भरा और अभावों से भरा कार्यक्रम सुहाना सफर, जहां मैं आपकी सखी आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए सज हूं। आप भी तैयार हो जाए इस नए सफर को यादगार बनाने के लिए क्योंकि सिर्फ आज हमारे हाथ में है। वैसे तो दिन बीत गए 9 दिनों मई का श्रोताओं, अब क्या होगा? जो कल ना मिला था फुर्सत करने का, जो कल ना मिला था फुर्सत करने का, क्यों ना वो आज कर ले और बदल दे किस्मत अपना। जी दोस्तों, आज हम हैं 9 मई 2026 आई अपने संगीत के सफर का हम आगाज करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें कहा गया है, दूर नहीं मैं तुझसे साथी, मैं तो सदा से तेरी। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मनोरंजन वह जरिया है जिसके माध्यम से हमारे और आपके बीच एक डोरी बनी हुई है। तो आइए अब गाने को एंजॉय करती हैं।

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी दोस्तों, हम यहीं पर हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए, और हमारा सफ़र होगा 2 घंटों के लिए। जी दोस्तों, इस गाने को सुनते ही हमें एक अलौकिक, एक दीवान सा एहसास अनुभव होता है, है ना? ये पुराने गानों के जादू ही हैं। वेल दोस्तों, कहीं कहीं पर जो है बारिश हो रही है, सो टेक योर प्रिकॉशंस। और साथ ही साथ हमें ज़रूर बताना कि आपके यहाँ मौसम कैसा है ऑन 5250-6200 पर, या फिर आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं 4028070 पर। और यहाँ पर हमारी पहली कॉल है बिंदु दुखित राम, जो कहवा कासिया से हमें सुन रही है। और आपको यह कार्यक्रम बेहद अच्छी लगती है, आपने कहा, तो थैंक यू इसके लिए जी। और आप जो है फिल्म कति पतंग का गाना मांग रही है, विशेषकर आपकी बहन सलोनी के नाम, जो बेले अरिवे सेश की रहने वाली है, साथ ही साथ सलोनी जी के पति है सत्य। तो सभी दुखित राम परिवार के लिए यह गाना चल पड़ा, और प्यारी बहना के लिए भी।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, काफी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर माधुरी जी हैं और आप फिल्म त्रिशूल का गाना सुनना चाह रही है, तो चलिए यह गाना आपके नाम। जस्ट एंजॉय दिस सॉन्ग।

0: ना सफर।
1: जी दोस्तों, गायत्री जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और आप कहती है कि आज आप घूमने गई हैं कटरबोन और बेटे सुधीर और बहू सुधा के पास घूमने गई हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म रेशमी रुमाल का गाना और यही गाना जाएगा आपके सभी परिवारों के नाम। भाभी मीरा है और उनकी बेटियां हैं गिरीशा मेधा, कटरबोन की बहन अमृता हैं, उनकी बेटियां हैं नेहा शिति दिव्या, बेटे सुधीर बहू सुधा कमलेश जी है, साथ ही साथ आपके नातियों के नाम भी हैं यहाँ पर जसवीर लक्ष और साथ ही साथ मीठी लेश। तो आप सबों के नाम यहाँ प्यारा गाना और एंजॉय कीजिए, परिवार का समय परिवार के साथ समय बिताइए एंड मेक योर डे वेरी फ्रूटफुल।

0: सुहाना सफर
1: जी दोस्तों 12:24 हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर अनीता के साथ और त्रियुले से कल्याणी जी ने फोन किया और आप की फरमाइश है फिल्म वारिस का गाना और यही गाना जाएगा आपकी चार बेटियों के नाम श्वेता हर्षिना श्रेष्ठा नितिशा पति वीरेन है छोटा नाती नजियान है दुआऊ परिवार है और सभी लिसनर्स के नाम तो चलिए यहाँ प्यारा गाना सुनते हैं लता जी और साथियों की आवाज़ में

0: जी दोस्तों, देवयानी जी रिश्मा फ्लैक्स से साथ है दे रही है और आपकी मांग है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और यह गाना जाएगा पूरे ठेरी और देवधारी परिवार के नाम, और साथ ही साथ आपकी पोती दिव्या हमें सुन रही है, तो थैंक यू इसके लिए जी। एंजॉय दिस सॉन्ग।
1: ओ मैंने प्यार किया

Wow, what a song! श्रोताओं, कहा गया है कि तीन चीजें जो जिंदगी में कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए, और वे तीन चीजें हैं समय, दूसरा है प्यार और तीसरा है इज्जत। क्योंकि ये तीन चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। जी दोस्तों, ग्रैंड ग्रुप से श्यामा जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म उजाला लता जी की आवाज़ में, और यही गाना जाएगा विशेषकर भाई जयप्रकाश के नाम। भाभी है नम्रता, निफ्यूज़ हैं युधीश केशव, आपकी प्यारी सखियां हैं वीना हामफोल और साथ ही साथ विश्वानी दुखी। तो चलिए इस गाने को भी हम आनंद लेते हैं।

0: listening to RM3 Radio Manoranjan. सुहाना सफर, सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, मौका से भी जो हैं सुदेवी हमेशा की तरह आप साथ हैं।

दे रही है। और आपने फिल्म रुख सत का गाना मांगा है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की सुरीली आवाजों में, और यही गाना जाएगा आपके पति राज के नाम और बच्चों के नाम। और साथ ही साथ फुलवंती जी वाकवा से साथ दे रही है, और आप कहती है कि आपके यहाँ जो है धूप खिली हुई है और आप घूमने जा रही है, सो एंजॉय योर सैटरडे। तो यहाँ गाना आपके नाम भी जाएगा, आपके परिवार वालों के नाम, पूरे बालगोबिन परिवार के नाम, MBC रेडियो परिवार के नाम, साथ ही साथ बेटी पूनम के नाम, अनीता के नाम, खासकर आपके सभी पहचान वालों के नाम यह गाना जाएगा। और साथ ही साथ यही गाना जाएगा ज्योति जी के नाम जो शातुरी बनारस से हमें सुन रही है, साथ ही साथ अश्नी है, रेखा है, सुरेखा है और पूरे माधव परिवार के नाम।

जी दोस्तों, हम वादा करते हैं कि हम आपके साथ 2 बजे तक रहेंगे और यहाँ पर बबू अनंतवा जी साथ दे रहे हैं कट्रोबोन से और आपकी फरमाइश है फिल्म घराना का गाना और यही गाना जाएगा पूरे अनंतवा परिवार के नाम।

जी दोस्तों, रिवेजुरम पर से माला जी साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रहे ही हैं वो कौन थी फिल्म का नगमा लता जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। और ये गाना चाहेगा किरण केविन कनिल कवि शिव सत्यम के नाम। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर और उसके बाद फिर मुलाकात होगी।

0: और ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ। आपको नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। बात सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकलिंग पर। मॉरिशस में DKD प्लास्टिक पाइप्स नामक कंपनी जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में विशेषज्ञ है, अब अपनी 20 वर्षों से अधिक की विकसित विशेषज्ञता के कारण इलाकाई स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। ये पहल इंडियन ओशन कमीशन IOC परियोजना के तहत समर्थित है, जिसका उद्देश्य इलाके में प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध लड़ना है। इस परियोजना के तहत प्रतिभागियों को सैंपिया में रिसाइकलिंग उत्पादन लाइनों का अवलोकन करने के लिए एक साइट विजिट का आयोजन किया गया। ये मित्रता समय के साथ मजबूत हुई है। कल रात तिल्फेमोका में आयोजित यूरोप दिवस के अवसर पर राजदूत उसको बेनेडिक के साथ देश के राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया गया, जो मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के पहले कदमों की गवाही है। नवाचार और प्रौद्योगिकी अमरीकी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बयान क्रेग हाल्डमाय संयुक्त अमेरिका के दूतावास में कार्यवाहक शॉर्ट डाफियर ने बुधवार को फ्लोरियाल में आयोजित एक राउंड टेबल के अवसर पर दिया। ये पहल इस वर्ष अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। विदेश में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को 2 ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकरों को निशाना बनाते हुए उनके चिमनी पर हथियारों से हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जो मध्य पूर्व में सैन्य संचालन की निगरानी करता है, ने एक वीडियो जारी किया जो उनके अनुसार दिखाता है कि तेल टैंकर सिस्टा फ्री और सेवदा को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा है कि ये जहाज अमरीकी द्वारा ईरानी बंदरगाह पर लगाया गया नाकाबंदी उल्लंघन कर रहे थे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। सोलफेरिनो नंबर एक वाक्वा में, सोलफेरिनो नंबर एक वाक्वा में 60 साल की 60 years old श्रीमती राधा हाउती रामधोनी, पैदाशी नाम उमेद और जिन्हें लोग मुन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम चार बजे इनके मकान सोलफेरिनो नंबर एक वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमामेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोते अरूज में 73 साल के 73 years old श्री रमेश्वर गिरधारी जिन्हें लोग रमेश बाजा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रॉयल रोड त्यागूज से उठाकर बामौसम कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: Suhana
4: सुहाना सफर
5: जी दोस्तों, 1:05 हुए हैं और सुहाना सफर कार्यक्रम जारी है। माइक पे हैं अनीता और यहाँ पर आपके गाने हैं, लिस्ट है यहाँ पर और चलवाएंगे अभी। एंड हमें ज़रूर बताना कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। ब्रह्मस्थान से उषा जी साथ दे रही हैं और आप कहती है हम भी रेडियो मनोरंजन के हम सफ़र हैं, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हम अजनबी नहीं हैं जी। ओके, और आपको ये वादा रहा का गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए आपके नाम यहाँ प्यारा गाना आ जाएगा और जो अगला गाना है बहुत ही प्यारा गाना है और एक खास लिसनर्स हैं जो हमें हमेशा सुनते रहते हैं लेकिन वे नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो उनके नाम भी यह गाना जाएगा जो अभी वाकवा में है और काम कर रहे हैं, तो आपको कहेंगे बोंको काश। तो चलिए काम करते करते इस गाने को भी एंजॉय कीजिए और हमें इस गाने का रिमिक्स वर्शन मिला है।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है अनीता जी की ओर से फी कॉम्फ्लेक्स से, और आप कहती है बड़ी स्वीट सॉन्ग चला रहे हैं आप, थैंक यू जी। हमेशा की तरह आज आपकी पोती आध्या की फर्स्ट बर्थडे है, वाओ, एक साल की हो गई है आध्या, सो ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आध्या, और ढेर सारी शुभकामनाएं दादा राज, दादी अनीता, बड़े पापा अंतीश, बड़ी मामा मनीषा, कजिन है हिमेशा, अंश, नानी इंद्रानी, रमा, पापा अंकुश है, मामा अशीमा है, उनकी ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं आशीर्वाद, और उनके लिए आप बजवाना चाह रही हैं फिल्म सुजाता का गाना, और जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो उन सब के नाम यह गाना जाएगा, ए बर्थडे सॉन्ग, सो आधिया हैप्पी बर्थडे टू यू परी।

दोस्तों, कहा गया है कि जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन हमेशा खुश रहो। L'Espérance Trébuchet, c'est Manu du Sohanji साथ दे रहे हैं और आप कहते हैं enjoying the show, enjoying your voice. Thank you जी. आपकी फरमाइश है Night in London मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और यही गाना जाएगा प्यारी पत्नी नजीमा सोहन के नाम, पूरे सोहन परिवार के नाम, सभी लिसनर्स के नाम और गया सिंह आश्रम के बुज़ुर्ग लोगों के नाम, साथ ही साथ जितने हमारे भाई बहन जो हैं अभी अस्पताल में हैं तो उनके नाम भी आप यहाँ गाना पेश करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि आपके दो बच्चे जो हैं बाहर से आए हुए हैं तो उन लोगों के नाम भी यह गाना चल पड़ा।

जी दोस्तों, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हर शनिवार को यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। और यहाँ पर कटरबोन से सरिता जी साथ दे रही हैं, आपकी फरमाइश है फिल्म प्यार का सागर। तो चलिए सुनते हैं मोहब्बत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में।

जी दोस्तों, रोजिल से सजीत जी साथ दे रहे हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म पेइंग गेस्ट का गाना, और यहाँ गाना जाएगा सभी श्रोतागण के नाम। आपने हमारे लिए भी गाना मांगा, थैंक यू। और आपकी सहपाठी हैं जो अभी इंडिया में है सरोवर, तो उनके नाम भी यहाँ गाना जाता है। चलिए सुनते हैं किशोरदा और वंस अगेन आशा जी।

0: जी दोस्तों, मुचिदा से राधा बाल गोविंद जी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आपकी प्यारी सहेली शोभा का कल जन्मदिन था।
1: ये फुवारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे बैया धर लो साजन।
0: तो आप अपनी प्यारी सखी शोभा के नाम एक गाना जो है उसकी मांग की है आपने, और ढेर सारी जो है बधाइयाँ शुभकामनाएं ऑफ कोर्स उनके पति और बच्चों तथा आपकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी बर्थडे टू यू शोभा जी। तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। फिल्म है अनुपमा और आशा जी की आवाज़ में।
2: You're listening to RM3 Radio.

जी दोस्तों, 1:31 हुए हैं। वैसे दोस्तों, तिथि आज 9 मई 2026, व्हाट ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। जहां 9 भी हैं और साथ ही साथ 5 भी हैं। जी हाँ, मई का महीना है तो 5 ही है। और फिर 2026 जिसको सिंगल डिजिट कर दे तो 1 बनेगा। इस प्रकार इसमें 9 हैं, 5 हैं और 1। यदि इसको उल्टा कर दें तो 1 5 9 होगा। और गहराई से देखें तो ये डिजिट्स, ये जो नंबर्स हैं, ये भी हमें जीवन की सीख देते हैं। नंबरों में भी मात्र 1 से 9 होता है। उसी प्रकार जो है, 1 रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ एक कार्य की शुरुआत होती है, ए न्यू बिगिनिंग ऑफ ए न्यू जॉब। इस प्रकार काम करते करते, मेहनत करते करते उसका मिडल वे आता है जो नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। और इस जर्नी में चलते चलते चलते चलते 9 तक आते आते यह कर्म के फल को प्राप्त करने का समय होता है। इसलिए दुर्गा पूजा के 8वें दिन के बाद जब नवा दिन आता है तो उसे सिद्धिदात्री भी कहते हैं, अर्थात सिद्धि, अचीवमेंट्स प्राप्त करने का समय। इसलिए जीवन में जो आपने शुरू कर लिया है उसे यूं ही बीच में ना छोड़िए, बस डटे रहिए, मंजिल मिलेगी अवश्य। इसलिए कहते हैं कि जब मौका मिले कुछ गहरा सोचिए और मार दे मेहनत का हथौड़ा, जिससे हो जाए कमाल धमाल। और जब भी आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे, वाह, व्हाट ए जर्नी। जी दोस्तों, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और त्रिवेणी से सिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी फरमाइश है फिल्म मंजिल मंजिल का गाना, यही गाना जाएगा आपके 3 बेटों के नाम, गौरव हैं, रूहान हैं और युग भी हैं। साथ ही साथ आपके पति, आपकी पति हैं और जो अभी हमें सुन रहे हैं, तो चलिए आप लोगों के नाम यहाँ प्यारा गाना। और थ्वाबुचिक से जो है शीला जी साथ दे रही है, तो यह गाना आपके नाम और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम जाता है।

जी दोस्तों, अनीता लाल जी भी साथ दे रही है और आप कहती है कि आप गंगा तालाब गई हुई हैं, पूजा कर रही है विशेषकर आपकी प्यारी सखी के नाम, और उनके लिए जो है आप अर्चना कर रही है। सो हाउ नाइस फ्रॉम यू कि आप दूसरों के लिए जो है पूजा कर रही है, और आप जो है फिल्म हाथ की सफाई का गाना मांग रही है विशेषकर करुणा के लिए, अमृता के लिए, खुद के लिए और सभी सुनने वालों के लिए। तो चलिए आप लोगों के नाम लता जी, मोहम्मद रफी, हाथ की सफाई, वादा कर ले साजना। और यही गाना जाएगा उन तमाम लोगों के नाम जो अभी साथ दे रहे हैं रेडियो।

जी दोस्तों, अगर आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं और हम फ्री नहीं हैं। साथ देने के लिए शुक्रिया जी। और यहाँ हम एक प्यारा सा मैसेज आया है, एक छोटी सी कविता है। प्रकाशवती जी बेल्जियम से साथ दे रही हैं और आप कहती हैं कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती, दर्द ना होता खुशी की कीमत नहीं होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। जी आपने फिल्म ढूंढ का गाना मांगा है, विशेषकर सुरैया के नाम, सिमी रवि के नाम, तो यह गाना आप लोगों के लिए चल पड़ा। साथ ही साथ यह गाना जाएगा किसके नाम, यह गाना जाएगा शीला जी के नाम, जो बुनमे से साथ दे रही है एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स।

जी दोस्तों, आना जाना ये तो ज़िंदगी की पुरानी रीत है। पंपलमूस से सचिन जी साथ दे रहे हैं और आपकी मांग है फिल्म एक फूल दो माली, और यही गाना जाएगा पोर्ट लुइस के संजय जी के नाम। ये पर

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, हमारे पसंदीदा कार्यक्रम सुहाना सफ़र का अंतिम चरण आ ही गया है। कुछ ही मिनटों में यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आपने साथ दिया, इतना बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि वे इंतज़ार करते हैं कि कब शनिवार आएगा और वे इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे। सो इन सभी शब्दों के लिए, गुड विशेज के लिए, प्यार के लिए दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद अनीता की ओर से। जब हम ऐसे ऐसे शब्द सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो अंतिम गाना जाएगा वो विशेष कर जो है अनु के नाम जाएगा, हरी जी की ओर से, जो बोबासा से साथ दे रहे हैं। तो अगला गाना जाएगा आपकी प्यारी अनु के नाम। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 2 बजे के समाचारों की ओर। और उसके बाद जो है अलका जी यहाँ पर हाजिर हो गई है इतिहास के झरोके कार्यक्रम के साथ। तो इसके साथ ही साथ अनीता को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, अगले शनिवार को मुलाकात होगी। सो तैयार रहना और टेक केयर, और ढेर सारा प्यार अनीता की ओर से। बाय बाय।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. देश विदेश की खबरें लेकर स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स नामक कंपनी, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में विशेषज्ञ है, अब कंपनी 20 वर्षों से अधिक की विकसित विशेषज्ञता के कारण इलाकाई स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। ये पहल इंडियन ओशन कमीशन IOC परियोजना के तहत समर्थित है, जिसका उद्देश्य इलाके में प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध लड़ना है। इस परियोजना के तहत प्रतिभागियों ने सैंपिया में रिसाइकलिंग उत्पादन लाइनों का अवलोकन करने के लिए एक साइट विजिट में भाग लिया। तेलफेमुका में कल यूरोप डे के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। राजदूत उस्का बेनेडिक के साथ देश की राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को

0: 55 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया गया जो मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के पहले कदमों की गवाही है। नवाचार और प्रौद्योगिकी अमरीकी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात क्रेग हार्बमायर अमरीका के दूतावास में कार्यवाहक सौजे डाफेयर ने बुधवार को फ्लोरियाल में आयोजित एक राउंड टेबल के अवसर पर कहा। ये पहल इस वर्ष अमरीका की 250वीं वर्षगांठ के अवसर के तहत आयोजित की गई। विदेश में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को दो ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकरों को निशाना बनाते हुए उनके चिमनी पर हथियारों से हमला किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड जो मध्य पूर्व में सैन्य संचालन की निगरानी करता है ने एक वीडियो जारी किया है जो उनके अनुसार दिखाता है कि तेल टैंकर सीस्टा 3 और सेवदा को निशाना बना रहा था। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। सोल्फेरिनो नंबर एक वाकुआ में 60 साल की 60 years old श्रीमती राधावती रामधनी पैदाशी नाम हुमैद और जिन्हें लोग मून नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम चार बजे इनके मकान सोल्फेरिनो नंबर एक वाकुआ से उठाकर थॉमा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 4 PM। रॉयल रोड त्याहूज में 73 साल की 73 years old श्री रमेश्वर गिरधारी जिन्हें लोग रमेश बाजौ नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रॉयल रोड त्याहूज से उठाकर बुआ मौशा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। और एवेन्यू पांचुस्टन ने रोज हिल में 57 साल के 57 years old श्री धर्म जय भवानीदीन जिन्हें लोग किशन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान एवेन्यू पांचुस्टन ने रोज हिल से उठाकर कोदेगद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: इतिहास के झरोखों से।
5: नमस्कार श्रोताओं, आइए एक झरोखे से झांकते हैं, देखते हैं उस झरोखे में जब पलट कर झांक रहे हैं तो कौन हमें देख रहा है। जुड़ गए ना आप हमारे साथ। बहुत सुंदर आपने सुंदर सुंदर गीत अभी अनीता जी के साथ सुने और अपनी दोपहर को और सुंदर बनाया। तो चलिए अब मेरे साथ और सुमी के साथ जुड़ जाइए 4028070 पर। श्रोताओं, जब इतिहास की खिड़कियों को खोला, विशेष रूप से राजस्थान की तरफ नज़र डालते हैं तो मीराबाई का नाम भुला नहीं पाते। आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान वाले अपनी बेटी का नाम मीराबाई कभी नहीं रखते हैं। वे मीरा की पूजा करते हैं, वहाँ मीरा के मंदिर हैं, लेकिन अपनी बेटियों के नाम वे मीराबाई नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि मीराबाई ने ससुराल में बहुत दुख झेले, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों को किसी तरह का दुख झेलना पड़े। तो कितने आश्चर्य की बात है ना, एक नाम की उपासना, एक व्यक्तित्व की उपासना, लेकिन उनको जो कष्ट सहने पड़े उससे सब डरते हैं। श्रोताओं, मीराबाई अगर हम ये कहें कि मध्यकाल की वह महिला थी जिसने सबसे पहले विद्रोह के झंडे गाड़े थे, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। बहुत ही कठिन था मध्यकाल में किसी महिला का अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ना, यह तो नामुमकिन था। लेकिन मीराबाई ने सारे बंधनों को तोड़ते हुए अपने अध्यात्म के क्षेत्र को अपनाया और हर कष्ट के लिए वे तैयार रहीं। वह चाहे जहर पीना पड़ा हो या बदनाम होना पड़ा उन्हें या परिवार से उनको निकाल दिया गया हो, इसके लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं तो प्रेम दीवानी, वह अपने प्रभु की प्रेम दीवानी थी और गिरधर गोपाल उनके प्रभु थे। तो ये जो भक्त थी जिसने प्रभु को अपना पति ही मान लिया था, पति अर्थात पत रखने वाला, इज्जत रखने वाला, जो आपकी इज्जत रखे, जो समाज में आपको मान से रखे, सम्मान दे सके, वही पति कहलाने योग्य होता है। लेकिन मीराबाई ने जिसको पति चुना वह अलौकिक था और उनके मनस में वह अलौकिक चित्र मानो उतर गया था और वे बस पूरा जीवन उसको खोजती रहीं। और परिणाम जो लोक कथाओं में मिलता है कि अंत में वे कृष्ण के मंदिर में जाकर जब बैठी तो कहते हैं कि कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई और वहाँ पर उनका शरीर किसी को नहीं दिखाई दिया। तो आपको आश्चर्य होगा कि मीराबाई जैसी महिला जो राज परिवार से थी, राज परिवार में ब्याही गई, लेकिन जो उसका लक्ष्य था, जो उसने मन में निश्चय किया था और जिस अध्यात्म के मार्ग पर वह आगे बढ़ी थी, वह अपने आप में अप्रतिम था। संसार में बहुत सी महिलाओं ने विद्रोह किया, बहुत सी महिलाएं आगे बढ़ी। अभी अभी हमने अंजाले कूपन के बारे में कितने कार्यक्रम सुने, लेकिन मीराबाई का विद्रोह एक अलग तरह का था। वे शरीर की आवश्यकताओं से जैसे ऊपर उठ चुकी थी। उन्हें जो एक साधारण जीवन में व्यक्तियों को चाहिए होता है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि पति की मृत्यु के बाद वे राज सिंहासन की बागडोर अपने हाथ में रख सकती थी क्योंकि वे राजपुताना थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर उनके जो देवर थे राणा सांगा, वे काफ़ी डरते थे। वे सोचते थे कि जब तक इसको समाप्त ना कर दें तब तक निशंक राज्य नहीं कर सकेंगे, और उनकी ओर से मीराबाई को काफ़ी कष्ट दिए गए। पर सभी कष्टों को झेलते हुए वे अपने अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ती रहीं। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब विद्रोहिणी महिलाएं जिन्होंने समाज में अपना एक स्थान, एक व्यक्तित्व, जिसे कहते एक पहचान जब पैदा की और इतना कुछ झेला, उस लिस्ट में अगर हम देखें तो मीराबाई का नाम सबसे पहले आता है। और श्रोताओं, मध्यकाल में तो इतने बंधन महिलाओं के लिए हो चुके थे कि घूंघट निकालना है, घर से नहीं निकलना, शिक्षा नहीं प्राप्त करनी, बेमेल विवाह हो जाते थे, बाल विवाह हो जाता था, एक भय के कारण कि जो आक्रांता भारत पर आ रहे थे बाहर से, वे लोग भारतीय महिलाओं को बेइज्जत करते थे, उठा के ले जाते थे, तो जो परिवार थे वे डरते थे। इस कारण इन सारी रूढ़ियों ने जन्म ले लिया, क्योंकि ये सारी बातें भारत के वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में कहीं नहीं मिलती हैं। लेकिन मध्यकाल में आते आते, क्योंकि 16वीं सदी मीराबाई के जन्म और मृत्यु का वक्त है और 1000 के बाद आक्रांता भारत पर आक्रमण करने लग गए थे, ऐसे में वे लोग लूटपाट भी करते थे और उसमें सबसे ज़्यादा वे महिलाओं को बेइज्जत करते थे। तो जो परिवार के लोग थे वे अपनी बेटियों का विवाह जल्दी करते थे, घूंघट डालने लग गए, धीरे धीरे चल के सती प्रथा भी शुरू होने लग गई, क्योंकि वे डरते थे कि हमारी घर की बेटियों का सम्मान या कोई उन्हें उनके सम्मान को कोई चोट ना पहुंचाए। लेकिन मीराबाई ने उस समय समाज की इन सब रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपने चरित्र को इतना पवित्र रख के अध्यात्म का मार्ग अपनाया कि आज विद्रोह के सूची में यदि मैं मीराबाई को सबसे ऊपर रखूं तो मुझे लगता है कि उनके प्रति एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। तो हमारे साथ सुमिता भी जुड़ पड़ी हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे। आज हम आपके साथ मीराबाई की ही चर्चा करेंगे।
6: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमेशा हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यकीनन ये हमारे श्रोताओं के लिए ही बड़ा दिलचस्प होगा। तो हम आशा करेंगे कि आपके फ़ोन कॉल्स हमें ज़रूर मिले 4028070 पर। मीराबाई सिर्फ कृष्ण भक्त ही नहीं थी, एक संत भी थी, है ना, और भक्ति आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
5: यद्यपि उन्होंने बैठ के खुद नहीं लिखा कुछ, पर बाद में उनकी रचनाओं की पदावली जब बनी जी, तो आज लोग उसके ऊपर PhD करते हैं
6: जी। और कहीं ना कहीं उस समय, जैसे कि भले ही वो राजघराने से थी, पर उस समय भी औरतों पर काफी पाबंदियां होती थी, लेकिन उन सभी पाबंदियों को तोड़कर उन्होंने अपनी मन की अपने आप में एक
5: तो
6: बड़ी बात है।
5: उनकी सास उनको कुलनाशिनी कहती थी जी, वह कहती थी कि संतों में जाके भजन गाती है तो ये नाम हमारे कुल पर कलंक लगा रही
6: जी।
5: लेकिन उनका चरित्र इतना तेजस्वी था कि इस कलंक से कोई लाभ नहीं हुआ
6: जी। और मतलब कि जितने भी लोगों ने उस समय उनके जो है दामन में दाग लगाने की कोशिश की सभी हार गए, कोई भी जो है सफल नहीं हो पाया। और अभी के समय में इस

0: की बात करें तो आज इस चीज को बहुत ही एक सम्मान के रूप में देखा जाता है।
1: मीराबाई की पूजा करता है पूरा राजस्थान, कितने मंदिर हैं जगह जगह मीराबाई के। तो चलिए एक मीराबाई का ही भजन सुनते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, मीराबाई अपने आप में बड़े अनूठा व्यक्तित्व था। सब कुछ केवल कृष्ण को समर्पित था। एक दिन उनके परिवार में जैसे सब लोग शादी वगैरह होती है, तो मीराबाई अपनी माँ के साथ बारात का आगमन देख रही थी। छोटी थी तो हंसते हुए सब लोग देख रहे, देखो दूल्हा है, देखो आ रही है बारात, देखो सब कितना नाच रहे हैं। तो मीराबाई ने बाल मन से माँ से पूछा, माँ मेरा पति कौन होगा? कहते हैं कि माँ ने हंसते हुए, उनके घर में एक गिरधर की मूर्ति थी, माँ ने हंसते हुए कहा कि यही तेरे पति हैं। बस मीराबाई ने उसे गोद में उठा लिया और उस दिन से वह मूर्ति ही उनका पति हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे, ये गीत उनका इतना प्रसिद्ध हुआ और उनके बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण के अलावा और किसी को अपना कुछ भी नहीं माना। वे जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी, जिनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और बचपन से कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। इस तरह का व्यक्तित्व अगर देखें तो ध्रुव का था, प्रहलाद का था, जहाँ बचपन से वे लोग भगवान के नाम या विष्णु नाम या ईश्वर के गीतों में संलग्न थे। और उसी कड़ी में मीराबाई भी आती हैं कि अभी छोटी ही थी और उस जमाने में छोटेपन में ही विवाह हो जाता था, तो मीराबाई का विवाह भी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। लेकिन वे मीराबाई के इस प्रेम को समझते थे और उन्होंने मीराबाई के प्रेम को सम्मान भी दिया। पर कहते हैं ना, जब आपने दुख सहना हो तो आपकी परिस्थितियाँ वही बन जाती हैं। तो उनके पति की मृत्यु जल्दी हो गई, इसके कारण मीराबाई का जीवन और अधिक कष्टकारी हो गया। उनकी सास, उनका देवर और परिवार भी उन्हीं के साथ मिल गया, मतलब उनकी ननद आदि, वे सब लोग लालच करते थे। वे सोचते थे कि कहीं मीराबाई राज्य के लिए सामने ना आ जाए। यद्यपि मीराबाई की कभी ऐसी मंशा नहीं थी, पर उन लोगों ने उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मीराबाई स्पष्ट कहती थी, बिना गुरु के भक्ति हो ही नहीं सकती है। और वे कहती थी कि कोई सच्चा गुरु होना चाहिए। आप सोचिए, मीराबाई स्वयं अध्यात्म के क्षेत्र में इतनी ऊंची उठ चुकी थी, लेकिन फिर भी वे रैदास जी के पास गई। रैदास जी जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन बहुत बड़े संत थे, और जाकर उनके चरण छूकर कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए। और आप सभी जानते हैं, मध्यकाल में ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी कि भक्ति के क्षेत्र में गुरु बनाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज भी जो सही गुरु हैं वे कहते हैं, पर दिक्कत यह है, ना तो चेला सही है ना गुरु सही है। अंधे अंधा ठेलिया दुनिया कूप परंत वाली स्थिति है। ना कोई शिष्य है ना कोई गुरु है, पर वास्तव में जो सच्चे गुरु होते हैं वे सच्चे शिष्य को ढूंढते हैं। श्रोताओं, जो सच्चा गुरु होता है, जब तक वह अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान अपने शिष्य को ना दे, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए वह ऐसा योग्य शिष्य ढूंढता है जो उसके ज्ञान को ठीक से ले सके। जैसे स्वामी विरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती को ज्ञान दिया, स्वामी परमहंस विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया। कितने उनके भक्त थे, लेकिन उनका मुख्य शिष्य विवेकानंद थे। तो इसी तरह से मीराबाई ने देखा कि गुरु रैदास बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, तो वे इनके द्वार पर गई और वे उनको ही अपना गुरु मानती थी। लेकिन मीराबाई गुरु मानने के बावजूद भी उनके लिए उनके कृष्ण ही सब कुछ थे। इसीलिए वे बार बार कहती हैं, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। जानते हैं ना श्रोताओं, दुनिया का दर्द डॉक्टर समझता है। आपको कहीं तकलीफ है, हड्डी चूट गई या नाड़ी छूट रही है या कमजोरी है, तो डॉक्टर जानकर आपको बताता है, दवाई भी देता है। लेकिन जो उस अलौकिक प्रिय से जुड़ना चाहता है, उसकी दवाई कौन देगा? इस संसार का वैद्य उस दर्द को नहीं जान सकता है। तो मीराबाई इसीलिए बार बार कहती हैं कि जौहर की गति जौहरी जाने, मतलब जो व्यक्ति जौहरी है वही पहचान सकता है कि ये सोना है या नहीं। ठीक ऐसे ही अगर कोई उस अध्यात्म के रास्ते को समझता है, वही मेरे दर्द को समझ सकता है, अन्यथा कोई इसको समझ नहीं सकेगा। इसीलिए उनके भजनों में

0: उनके गीतों में एक दर्द का स्वर हमको लगातार सुनाई देता है।
1: बिल्कुल, और मीराबाई कहीं ना कहीं निष्काम भक्ति के लिए तो जानी ही जाती थी, लेकिन अपने समय में कई ऐसी जो है पुरानी रीतियां थी उन पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी ना, आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को जहां पर दबाया जाता था।
0: यहां तक कि वो जब गांवों में कृष्ण नाम का कहते हैं उनके पास एक तारा भी होता था, जो चित्रों में भी हम देखते हैं, तो जिन गाँवों में गई, ऐसा इतिहास के कुछ पन्नों में आता है कि उन गाँवों में भी वे लोगों को समझाती थी
1: जी।
0: कृष्ण भक्ति के साथ साथ उन्होंने लोगों को शिक्षित भी किया,
1: जागरूक करने का काम भी
0: किया। इसीलिए जब जब उनको मारने का प्रयास किया गया तो इन्हीं जो सद विचार वाले लोग थे वे लोग जब उनका सम्मान करते तो वे ही उन्हें बचाते थे
1: जी।
0: लेकिन जब भी मारा गया या मान लीजिए उनको कटवाने के लिए सांप भेज दिया गया, जहर भेज दिया गया, लेकिन देखिए विश्वास मीराबाई के भीतर इतना अधिक था कि वो जहर का प्याला भी उनके लिए अमृत। मतलब उनको लगा कि जीवन तो कृष्ण के लिए समर्पित है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि मीराबाई एक साध्वी थी, सच्चे मार्ग पर थी, तो जो लोग जहर ला रहे थे उनको मुश्किल हो रही थी उनको जहर देने में, तो बीच रास्ते में ही ये सब बदलाव हो गया
1: जी।
0: तो वो जहर था ही नहीं
1: जी।
0: मतलब जो व्यक्ति सच्चे रास्ते पर चले, और मीराबाई ने अपने समय में जिस जिस क्योंकि पदयात्राएं उन्होंने बहुत की, संतों के बीच में रही, संतों वे केवल कृष्ण नाम ही जपती थी और कृष्ण की भक्ति की बात करती थी, पर इतिहास में आता है कि वे जहां भी रही, जहां अगर कहीं कोई गलत बात थी या कुछ गलत किसी के ऊपर अत्याचार, उन्होंने इसका विरोध किया हमेशा।
1: और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी था जब उस समय के संत जो खासकर पुरुष थे एक महिला को देखकर काफी विचलित हो जाते थे, उनके खिलाफ बोलते थे,
0: लेकिन एक समय सच्चे संत वे नहीं बोले कभी।
1: और एक समय ऐसा भी आया कि वही फिर इनका सम्मान भी करने लगे जिस तरह का कार्य ये करती थी।
0: बिल्कुल,
1: उसको लेकर
0: उस जमाने में तो कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, पलटू, ये सारे संत श्रेणी के लोग थे, गुरु नानक इत्यादि। तो मीराबाई राजस्थान की तरफ थी, कबीर उत्तर प्रदेश बनारस की तरफ थे, तुलसीदास काशी बनारस की तरफ थे, पर जो क्योंकि उस समय तो पदयात्राएं जो भी जैसे कबीर ने तो काबा मक्का मदीना तक पदयात्रा की। अब सोचो अफगानिस्तान उन्होंने क्रॉस किया होगा आज के बॉर्डर के मुताबिक। तो ये समाज को आगे ले जाने के लिए पदयात्राएं करते थे, लेकिन मीराबाई मंदिर मंदिर, यहाँ तक कि मीराबाई मथुरा वृंदावन भी गई, लेकिन अंत में वे गुजरात के जो कृष्ण मंदिर है वहीं पर उन्होंने समाधि ली थी
1: जी। चलिए ऐसा करते हैं, एक और गीत हम जोड़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओ, मीराबाई ने जब कृष्ण को अपना सब कुछ माना, इसको समझना आसान नहीं था। यहाँ तक कि आज के युग में भी समझना आसान नहीं है। मान लो आज के युग में यदि कोई मीराबाई पैदा हो जाए, जमाना बहुत परखेगा उसे कि वह कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। और आज के युग में तो विडंबना भी बहुत है ना, सच्चे संतों को ढूंढना बहुत ही कठिन है। जिस संत का कच्चा चिट्ठा खुलता है तो वहां पर कितने ही स्कैंडल्स निकलने लग जाते हैं। कहीं पैसों का गोलमाल है तो कहीं पर किसी के शोषण का गोलमाल है। मीराबाई जैसा सच्चा व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं था। मीराबाई पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थी। यहाँ तक कि बहुत बार उनके लिए, यहाँ उनकी ननद ही उदाबाई जिसका नाम था, वह हमें

0: अच्छा कहती थी, उनको बदनाम करती थी कि यह मंदिर में जाके किसी और पुरुष से मिलती है, कोई इसका प्रेमी है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने कहा कि देखेंगे तो पता चलेगा ना, चलो देखते हैं, लेकिन मीराबाई जब एक बार मंदिर में बैठी थी तो सबने कहा कि तुम जिससे बात करती हो सामने दिखाओ उसे लाके। उसने कहा वो तो मेरे सामने ही बैठा, मैं आपको सामने लाके क्या दिखाऊं। तो श्रोताओं, मीरा को कृष्ण दिख रहे हैं ना, क्योंकि उसके दिव्य चक्षु कृष्ण को पहचान रहे हैं। अब राणा को या उसकी ननद को या उन लोगों को कहां से दिख सकते थे। तो ये एक अलग तरह की कहानी हमें इतिहास में मिलती है। पर मीराबाई इन सब बातों से हारी नहीं, वे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती गई। उनके लिए इन चीजों का कोई अर्थ ही नहीं था अगर, और उन्होंने तो अपना राज्य भी छोड़ ही दिया था। उसके बाद तो वे पद यात्रा, गाँवों में जाना, संतों के बीच बैठकर गाना, इसी मार्ग को उन्होंने अपना लिया था। और आप देखिए, उनके भजनों को बाद में लिपिबद्ध किया गया, इतने प्रसिद्ध हो गए थे राजस्थान में वो भजन कि श्रुति परंपरा से लोगों को याद रहे, और तब उसको लिपिबद्ध किया गया, जो आज हमें मीराबाई की पदावली के रूप में मिलते हैं। मीराबाई ने जो कुछ गाया या लिखा तो नहीं कहूंगी, जो गाया या जो अपने भाव अभिव्यक्त किए, उसमें इतनी गहराई है कि वे स्वयं तो कोई पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन आज अनेक पुस्तकें उनके ऊपर लिखी जाती हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स PhD उनकी मीराबाई की पदावली पर करते हैं, और उनके जैसे कबीर की उलट बांसियाँ इत्यादि हैं। अब कबीर की उलट बांसियों को समझना भी टेढ़ी खीर है। ऐसे मीराबाई ने जहाँ पर बहुत सहज सरल भाव से गाया है वहाँ तो बहुत ठीक समझ आता है, लेकिन कहीं कहीं पर मीराबाई ऐसी बात कर जाती है जो विरोधाभास को दिखाती है। वे बार बार कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ठीक है, राम रूपी रतन मिला, फिर वे कहती हैं इसको चोर नहीं ले सकता, इसको कोई घटा नहीं सकता है। तो जिसने राम रूपी रतन धन को समझा नहीं, वह इसके अर्थ को नहीं समझ पाता है। तो मीराबाई ने जो उदाहरण भी लिए वे जीवन से लिए, जो आसपास उनके जीवन पे था उसी से ही उन्होंने लिए। लेकिन गिरधर गोपाल की सबसे बड़ी भक्त उस काल की मीराबाई ही थी।
1: लोग कहते हैं कबीर दास जी जो कहते थे, मीराबाई ने उसे जी कर दिखाया।
0: हाँ, सच बात है, जिए तो कबीर भी, हाँ, लेकिन मीराबाई, हाँ, ने उसे सगुण, जैसे कबीर निर्गुण,
1: क्योंकि दोनों अलग अलग सदी के थे ना,
0: हाँ, निर्गुण थे, हाँ, वे तो राम को केवल एक शक्ति मानते थे, लेकिन मीराबाई तो साक्षात कृष्ण को, मूर्ति को लेके घूम रही है और एक सगुण उपासिका है
1: जी।
0: पर उस भक्ति को जिया उन्होंने
1: जी। और कहीं ना कहीं अभी के समय में अगर मीराबाई के जीवन को देखें और हम प्रयास करें, तो आज छोटी छोटी चीजों में किस तरह से हम लगाव ढूंढते हैं ना, छोड़ने को नहीं देखते हैं। और वही मीराबाई एक इतने समृद्ध परिवार से होने के बावजूद एक सरल राह को चुनना। हाँ,
0: लड़कियाँ तो इन चीजों में घुली हुई होती
1: जी।
0: अब मीराबाई की जगह कोई और लड़की होती तो गुड्डा समझ के खेलती, लेकिन वहाँ तो मेरे तो गिरधर गोपाल हो गए एकदम से।
1: तो चलिए, यहाँ पर आपने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस गीत की बात की, तो चलिए इसी गीत को हम चलाते हैं हमारे सभी श्रोताओं के नाम।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, राजस्थान का जो इतिहास है वो महलों का, झरोखों का और वहाँ की रेत ऊंट इस सब का है। और वहाँ पर महल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आप चाहे उदयपुर चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, जयपुर से, जयपुर तो पिंक सिटी कहलाता है। जयपुर के सब बड़े बड़े जितने महल हैं सब पिंक पत्थर से बने हुए हैं। और आप जयपुर के हवा महल में जब जाएं तो ऊपर जाके झरोखों से ही आप झांकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि राजा मानसिंह ने वो जो जयपुर का हवा महल बनवाया था, वह जयपुर में जब राजाओं की सवारी निकलती थी और राजा मानसिंह या राजा जो भी वहाँ से निकलते थे, इन झरोखों पर उनकी रानियाँ और उनकी सब सखियाँ बैठती थी और वे ऊपर से उस भव्य जुलूस का या भव्य यात्रा का दृश्य देखा करती थी। क्योंकि उस जमाने में रानियों को नीचे सामान्य जनता में आने की अनुमति भी नहीं थी, तो वे झरोखे, अभी भी आप ऊपर बैठे तो पूरा शहर और पूरी मेन सड़क दिखाई देती है। तो राजस्थान का इतिहास तो झरोखों का ही है, लेकिन मीराबाई इन झरोखों से मुक्त थी, पर उसकी कहानियाँ उन झरोखों में छिपी हुई हैं। वास्तव में इंसान के भीतर बहुत सारी भावनाएं होती हैं और वह अपनी भावनाओं को किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पुस्तक के प्रति या किसी संस्था के प्रति अभिव्यक्त करता है, मदद करता है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से समर्पित बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मीराबाई उन लोगों में से थी जो बटी नहीं हुई थी। जैसे हम अपने जीवन काल में हम गृहस्थी भी हैं, कमाते भी हैं, थोड़ा दान भी कर देते हैं, थोड़ा सत्संग में भी चले जाते हैं और विवाह इत्यादि भी अटेंड करते हैं, पार्टी में भी जाते हैं, लेकिन मीराबाई का जीवन पूरी तरह से, पूरा जिसे कहते हैं ना 100%, वह पूरा का पूरा कृष्ण को समर्पित था। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अलग ही स्थिति थी। कभी कभी हम कहते हैं कि ईसाई धर्म में जो नंस होती हैं वे मन में जीसस के साथ विवाह करती हैं, लेकिन उसके बाद भी वे अपना एक जीवन जीती हैं, पर मीराबाई पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थी।
2: अलका जी, अगर हम मीराबाई के जीवन की बात ही करें तो उस समय व्यक्ति इतनी सरलता से अपनी भक्ति कर पाता था, क्या अभी के समय में लोगों को क्यों कठिनाई होती है फिर?
1: अभी हम बटे हुए हैं इसलिए कठिनाई होती है।
2: बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस
1: हैं और हम जीना चाहते हैं उसमें भी। हम एक आनंद की खोज में भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि, हम जानते हैं कि स्थाई आनंद उस भक्ति के साथ है, इसलिए हम ऐसे कंसर्ट में या ऐसे लोगों को यूट्यूब पर सुनते हैं कि कुछ क्षणों के लिए हम दूसरी चीजों से कट जाएं, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद फिर हम वापस फिर अपनी दुनिया में लौट के खुश होते हैं। मीराबाई की वापसी की दुनिया उन्होंने कोई बनाई ही नहीं थी, वे पूरी, इसीलिए उनका प्यार जो था या जिसे हम कहें उनकी जो भक्ति थी, पूरी की पूरी वे कृष्ण को समर्पित थी, भाव रूप से, शरीर रूप से, मन रूप से
2: जी।
1: इसके अलावा उन्होंने और कोई इच्छा रखी ही नहीं थी।
2: जिस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर चारों ओर घूमती थी,
1: सिंबल है उनका।
2: तो आज के समय में बहुत से ऐसे हम भक्तों को देखते हैं ना कि बाल रूप भगवान का जो है साथ में लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब लोग भी उन्हीं से प्रेरित हुए होंगे।
1: हो सकता है ना, उस छोटी मूर्ति का बाल गोपाल जिसे हम कहते हैं, वो बच्चों के लिए भी एक आधार है। वास्तव में जो सगुण भक्ति है वो मन को जल्दी टिका देती है। जब आप सगुण भक्ति करते करते फिर आप निर्गुण को समझ पाते हैं। तो सगुण भक्ति में आप, उसमें यह है कि पूरे दिन का आठों प्रहर की उसमें पूजा होती है। आप अगर सो रहे हैं तो प्रभु को भी सोना चाहिए, उन्हें चद्दर ओढ़ाइए, अब उनके स्नान का समय है, अब भोजन का समय है। जीवन में एक नियम और पवित्र

0: पवित्रता आती है
1: जी, डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं ना,
0: मतलब अगर प्रभु को भोजन करा के आपको भोजन करना है तो आप जल्दी उठेंगे, उनका भोजन तैयार करेंगे और फिर आपके भोजन में ऐसी चीजें नहीं होंगी जो भक्ति को, भक्ति के मार्ग में बाधक है।
1: जी, जी।
0: तो आपकी किचन पवित्र होने लग जाएगी, जी, जी। आप क्योंकि आपको पूजा करनी है, आप नहाएंगे धोएंगे, आप शरीर से मन से पवित्र होंगे, क्योंकि आजकल तो देखिए सुबह उठते ही बैड टी चाहिए
1: जी।
0: मैं तो बैड टी नहीं कहूंगी, बैड टी कहूंगी।
1: अभी तो सुबह उठते ही लोग सबसे पहले अपना फोन देखने लग जाते हैं।
0: आप सड़क पर देखिए लोग बोतल लेके घूम रहे होते हैं सुबह सुबह
1: जी।
0: तो ये जो सगुण भक्ति है व्यक्ति को अनुशासित करती है और भक्ति का मार्ग खोलती है
1: जी।
0: तब आप सीखते हैं कि प्रभु से जुड़ना कैसे है
1: जी। और सही मायने में कई लोग वाकई में ईश्वर को जैसे कि अपने बच्चे जैसे ही रखते हैं ना, बहुत से लोग।
0: इसमें बहुत सही है, आप देखिए आज डिप्रेशन का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। जब आप प्रभु को अपना मित्र, बेटा, पति, सखा मानते हैं, तो जब आप अकेले हैं आप उनके सामने रोते हैं,
1: कोई है आपके साथ बात करने,
0: उनसे आप बातें करते हैं, और आप सभी को पता है हमारे इनर में जवाब आते हैं, हम ना सुने और बात है लेकिन कुछ जवाब सुनाई देते हैं,
1: पता चलता है।
0: तो आप यदि किसी जगह पर रो सकते हैं, खुल कर बात कर सकते हैं, तो अंदर का जो धुआं इकट्ठा हो रहा होता है वो एकदम निकलता है
1: जी। और अभी के समय में ये बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। आप अस्पताल देकर जाइए, यंग लड़के डिप्रेशन में घुसे हुए हैं, मोबाइल वे लोग आधी आधी रात तक यूज करते हैं, तो दिमाग की थकान दूर नहीं होती उनकी। फिर क्या देख रहे हैं इसका कोई चेक नहीं है, क्या चीज दिमाग पे असर डाल रही है उसका कोई चेक नहीं है। फिर भोजन, क्योंकि मोबाइल है कोई देखना ही नहीं चाहता, केवल स्वाद होना चाहिए, तो जीवन पद्धति ही पलट जाती है। तो आज यंगस्टर्स कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर भक्ति के क्षेत्र में हम होते हैं तो हम अपना मन प्रभु से खोलते हैं
1: जी।
0: मीराबाई को कितनी भी दिक्कतें आई लेकिन वो दिक्कतें उनकी दिक्कतें नहीं बनी, क्योंकि उनके लिए मेरे गिरधर गोपाल हैं। और किसी बात जैसे तराजू पर इधर गिरधर गोपाल थे, उधर दुनिया की चीजें थी, वो सब उसके सामने फीकी थी
1: जी। और अभी के समय में भी काफी ऐसे उदाहरण है जो उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोफेशन को छोड़कर भक्ति मार्ग की ओर बढ़े, गौर गोपाल दास जी की अगर हम बात करें,
0: जिनको हम सुनते हैं
1: जी,
0: और उनके पिताजी बहुत नाराज हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए इंटरनेशनल लेवल पर वे भक्ति के क्षेत्र में,
1: किताब भी आई थी ना, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से आजकल प्रेमानंद जी का, उनके भी जो शिष्य है, एक आर्मी से वापिस आया हुआ है, एक इंजीनियर था और एक तो पहलवानी में था इंटरनेशनल लेवल पर, तो वे सभी लोग अभी देखिए सब छोड़ के, कभी कभी कुछ लोग सवाल करते हैं कि इससे तो वे लोग नौकरी करते तो देश का भला होता, लेकिन इसके जवाब में मैं कहना चाहती हूँ कि नौकरी अगर वे करते तो एक संस्थान का, एक कॉर्नर का भला होता और वे तनख्वाह लेके एक ईमानदार व्यक्ति होते, लेकिन जब वे इस रास्ते पर आए और समाज में एक सच्चे भक्त बन के जी रहे हैं तो वे समाज का चरित्र बना रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: वहां वे एक ऑफिस में एक उदाहरण होते 10-15 लोगों के लिए, लेकिन यहाँ वे हजारों लोगों के सामने एग्जाम्पल है, तो जिस समाज का चरित्र अच्छा होने लगता है तो अपने आप ही वह समाज बदलने लगता है
1: जी।
0: तो ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये समाज को बदलता है। तो मीराबाई के चरित्र में वही खुशबू थी, वे जहां भी गई लोगों ने उनको सम्मानित किया, लेकिन उनके परिवार ने उनके लिए समस्याएं खड़ी की।
1: और अभी के हम कलयुग की बात करें तो कहते हैं ना कि भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें सारी मुसीबतों से जो है दूर कर पाएगा, इसलिए हम अपने आसपास देख रहे हैं आजकल लोग भक्ति की ओर बहुत ही जो है अग्रसर हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं।
0: मुसीबत आती है लेकिन एक पावर आपको मिलती है
1: सामना करने की शक्ति।
0: जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुसीबत ना आए। जितने बड़ा रास्ता उतनी बड़ी मुसीबतें। मीराबाई का रास्ता बहुत श्रेष्ठ था, उनको जो मुसीबतें झेलनी पड़ी हम सोच भी नहीं सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि घर में उनका कोई स्थान नहीं रहा, जहां जाके मंदिर में सो रही हैं, पुरुष प्रधान समाज था, ऐसे समाज में इतनी इज्जत
1: उस समय की अपनी अलग ही चुनौती
0: थी, और इतनी इज्जत बटोरी कि कोई उनको कुछ कह नहीं सकता था। अब सोचिए वहां तक पहुंचना जिस समाज में औरत दोयम दर्जे की थी, महिलाओं को पुरुष के आगे बोलने का हक नहीं था, ऐसे में भी वे मंदिर में अगर सोती हैं, भजन गाती हैं, तो आम व्यक्ति उनको सम्मान देता है कि वे चरित्र में बहुत तेजस्वी हैं। तो ये चीजें जो मीराबाई ने उस समय औरत का एक स्टेटस खड़ा किया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: चलिए एक और गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।
2: गीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, आज इतिहास के झरोखे से हमने विश्वास का, भक्ति का, अध्यात्म का वह पन्ना खोला जिसमें एक महिला ने उस काल में अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया कि आज सदियां बीत जाने के बाद भी समाज उन्हें याद ही नहीं करता, बल्कि उन्हें उदाहरण के रूप में लेता है और आज भी अध्यात्म के मार्ग की वे आदर्श हैं। क्यों सुमी, आपके विचार के साथ यही प्रोग्राम समाप्त करेंगे?
2: बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी के समय में जब हम ऐसे ऐसे व्यक्तित्व की बात करते तो कहीं ना कहीं उनके गुण हमारे भीतर भी आ जाते हैं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें पढ़ने का, जानने का अवसर मिलता है
1: और पता चलता है कि किस किस काल में किस तरह से व्यक्तियों ने, यही इतिहास के झरोखे से है ना, कि वो पुराने इतिहास के पन्नों में आखिर क्या ऐसा किया किसी ने कि झांकने पर कुछ नया मिल रहा है।
2: और हमारे लिए भी एक ऐसा प्रोग्राम बहुत अच्छा है कि हमें हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया सीख और जानने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे।
1: शुभ दिन, नमस्कार
2: जी। और 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद सवेरे जो आज की चर्चा कार्यक्रम चलाया गया था उसका जो है रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे। हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे। नमस्कार आप सभी को।
3: You're listening to RM3 Radio।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार. सड़क पर आपकी सुरक्षा एक छोटी सी चूक से खतरे में पड़ सकती है और कई बार ये चूक होती है आपके टायरों की हालत को नज़रअंदाज करने से. घिसे हुए टायर, कम पकड़, लंबी ब्रेकिंग दूरी और एक पल में हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. विशेषज्ञ चेतावनी दे रही है टायरों की नियमित जांच सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि सड़क पर सुरक्षा रहने की ज़रूरत है. सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है जो देश के विकास में महत्वपूर्ण है. जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय की सरपरस्ती में नेशनल वुमेन्स काउंसिल द्वारा रेजी में आयोजित एक समारोह में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नवामारी ने फंड के प्रबंधन में पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया और महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण के विकास की आवश्यकता पर भी बात की. इस समारोह में महिला संगठनों और इलाकाई समितियों को अनुदान प्रदान किया गया और इसके अलावा शी क्रिएट्स नामक प्रतियोगिता की विजेता महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया. और कल रात तेलफेमुका में यूरोप दिवस का आयोजन किया गया. अवसर पर राजदूत उस्का बेनेडिक के साथ देश के राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव उपस्थित रहे. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र भी भेंट किया गया जो मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के पहले कदमों की गवाही है. विदेश में भारत में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कई नेताओं को की मौजूदगी में बंगला भाषा में शपथ ली और वहां दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना उनके लिए गर्व की बात रही. और आज आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनते हुए वहां अपने संस्थापक पुरखों के सपनों को साकार होते वहां के लोग देख रहे हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार. रॉयल रोते अरूज में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्री रमेश्वर गिरधारी, जिन्हें लोग रमेश बाजौ नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रॉयल रोते अरूज से उठाकर बुआ मौसा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमरात 9:30 AM. एवेन्यू पैंचू स्टैनली रॉज हिल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री धर्म जय भवानी दीन, जिन्हें लोग किशन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके मकान एवेन्यू पैंचू स्टैनली रॉज हिल से उठाकर कोदेगौद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM. जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद, श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगुत्रोय की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी बाद में इनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर दुफया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा. नंबर 9 रू दे ला रेनेसांस नंबर 59 120 फ्रांस में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी, जिन्हें लोग अनीता नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. वे पहले लिबेटो वाकुआ की रहने वाली थी. इनकी अर्थी सोमवार को सोमवार को दिन के 1:45 बजे इनके मकान नंबर 9 रू डे ला रेनेसांस फ्रांस से उठाकर एली फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 1:45 पीएम। और 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण, जिन्हें लोग पिपे नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी मंगलवार को सुबह 10 बजे पचित्रिया मोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे एट 10 एएम। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.

0: Sport.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: फिर जो ट्रावाई आप जाने ला हमने के देश में कितने बरिस से मनाते आवत है जा और ये एगो दिन है जब हमने उस सब मजदूर के श्रद्धांजलि दे ला जा उन लोग के सम्मान में ये दिन रखी ला जा जे लोग हमेशा से काम कर ले हवन जा और आज के भी मजदूर लोग के और ये कार्यक्रम में हमने के दुगो मेहमान हवन एक तो आप्रवासी घाट ट्रस्ट वन के चेयरमैन श्री सुखेंद्र रामदास कहे कि आप्रवासी घाट से ही गुजर के हमने के परदादा परदादी लोग आ रहन जा नमस्ते सुखेंद्र रामदास जी। और हमने के दूसरा मेहमान हवन धर्मानंद गोविंद जी और धर्मानंद गोविंद जी हमने के थोड़ा बतायन मजदूर वर्ग के जीवन उस समय कैसे बीतल जब हमने के जन्म नहीं हो रहा। धर्मानंद गोविंद जी नमस्ते।
3: नमस्ते किरण जी।
2: आप दोनों मेहमान के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा और आज हमने ये चर्चा के जारी रखब जा जो पिछला सप्ताह हमने अधूरा छोड़ के पड़ रहा समय की पाबंदी के ध्यान में रखते हुए रोके के और एक बार फिर शुरू करब जा सुखेंद्र रामदास जी उस सब मजदूर वर्ग के सम्मान के ई दिन पर चर्चा करते हुए जो पहला मई के मनाया लाजा और पहला मई हमने के देश में और दुनिया भर में एगो बहुत सैम्बोलिक दिन है प्रतीकात्मक दिन है और मॉरिशस में मजदूर के साथ साथ उस सब जो नेता लोग हवन जा जो श्रमिक संघ हवन जा जे लोग संघर्ष कर लन जा इस सब मजदूर के हक में उ लोग के भी श्रद्धांजलि देवल जला तो थोड़ा एगो संक्षेप में ई दिन के जो लहपोता सा जो महत्व है एक बार फिर हमने के थोड़ा बतावा।
4: नमस्ते श्रोतागण जे लोग हमने के सुना था देखा था अभी तो जैसे बोलो किरण जी ले प्रीमियर में देख रहे थे हमने के काम करवा लो खातिन मजदूर लोग खातिन तो बहुत कठिन से उस समय के जन विद्वान लोग रहल जन आदमी लोग सरकार में रहल तो लोग एगो जुटाव आने रहन जा तो जुटाव में एगो संदेश
2: पहुँचल
4: जा और एगो डिसीजन भी लेवल रहल तब जाके गिरोजमो आके चिल पंडित सहादेव शशि सगा गुलाम विश्वदयाल लोग रहन जा तब ओलो हाउलेपो के जोन पॉलम बैला सा और में गल होते होल तब जाके लिफोमिया में देखते होल कम करवा लो खातिन स्पेशल में कम करवा के रहलू
2: आम छुट्टी
4: आम छुट्टी आम छुट्टी बस कि वो लोग सोचलन जा कि एक एगो दिन चाहेला हमने के मजदूर लोग खातिन देखते करे के
2: खास तौर पर जब ये मजदूर लोग शुरू में जब आइलैंड सा मॉरिशस में तो उ लोग के छुट्टी नहीं रहल दिमास के दिन भी मॉरिशस वो अकेला कॉलोनी रहल बरतानी प्रशासन के तले जहाँ पर दिमास के दिन भी काम होवत रहल।
4: हाँ और ये खातिन एगो दिन देवल गए रहल वो लोग के श्रद्धांजलि देवे खातिन
2: और उ लोग के प्रतीकात्मक रूप से एगो आराम करे के दिन
4: आराम करे के दिन। हाँ
2: जी। और हमने संगे हवन धर्मानंद गोविंद जी चाचा जी आप हमने के बतावा कि मजदूर संक्षेप में आज आप मजदूर वर्ग के जब बात करत हवा आपके पिताजी के आपके दादा के जमाना के बाद आपके जब बचपन कैसे बीता तो आज के कार्यक्रम में आप कौन कौन विषय पर आप प्रकाश डालबा।
3: धन्यवाद। जैसे कि शुरू में बोलना कि हमने के बाप दादा पर दादा आइलन जा भारत से आप प्रवासी घाट में हो जाओ उतरन जा हौजा से जब शुरू करब जा तो कहाँ रहन जा झोंपड़ी में रहन जा कहाँ कहाँ रहन जा इत इतिहास बाटे आतवानित फुलिया में जाके बसलन जा सबसे पहला जो रहन जा और फिर सगरो सगरो दाका बोला तनी सा आ उ लोग के रहन सहन कैसे रहल हौ औसन झोंपड़ी में उ लोग के हम आज ई चीज़ें में बोला इस क्षेत्र में कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे रहा लोग के लसाते लेजिकाशों कैसे रहल और वो लोग के नौकरी कैसे रहल कौन काम करत अनजा कौन कौन सुविधा रहल कौन नहीं रहल सुविधा ये सब विषय में आज हम बातचीत करें।
2: जरूर। तो जैसे हमने सुन ली जा हमने संगे दुगो मेहमान हवन जे लोग आज श्रम दिवस से जुड़ल मजदूर वर्ग के जीवन पर बतायन जा हमने देखब जा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे हमने के परदादा परदादी जब इस देश में अलन जा तो उ लोग के बेटा बेटी कहाँ से वो लोग के प्रेरणा मिलल, इस देश में सब कठिनाई के बीच रहते हुए

आगे बढ़े के अपन जीवन सवारे के आज जो मॉरिशस में हम निहाई जा ई मॉरिशस के सवारे में एक निर्माण करे में ई सब मजदूर वर्ग के ही दुगो हाथ और दुगो पाँव रहल और फिर उ लोग के जो दिमाग बा उ लोग के जो बुद्धि बा उ लोग के जो श्रद्धा रहल ईश्वर के प्रति अपन इष्ट देव के प्रति तो ये सब विषय पर हमने अभी गहराई में जाप जा हमने संगे जुड़ल रहिया। फिलहाल ले जाए को छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। और हमने बात कर रहे थे जा मजदूर वर्ग लोग के जीवन हमने के देश में, जब मजदूर वर्ग के बात कर रहे थे जा तो वो लोग कोई और नहीं रलन जा, हमने के माता पिता रलन जा, दादा दादी, परदादा परदादी। और ये विषय पर बात करे खातिर हमने संगे दुगो मेहमान हवन सुखेंद्र रामदास जी और धर्मानंद गोविंद जी। गोविंद जी, आप एगो पिता तुल्य एगो व्यक्ति हवा, आज हमने के मेहमान हवा, हमने के थोड़ा बतावा उस समय में जब हमने मजदूर वर्ग के बात कर रहे थे जा, जब इस देश में हमने के जो इकोनॉमी बा वो खेती पर आधारित रहल, कान के खेती, उस समय में जीवन कैसन रहल, गरीबी के जीवन रहल, फिर भी देखा इतना संघर्ष करके वो सब कठिनाई के पार करते हुए हमने के जो पाओ लोग रहन जा, माँ बाप रहन जा, दादा दादी रहन जा, आप जैसन व्यक्ति लोग के इस जगह पर पहुँचे रहन जा और आप लोग के लड़का हमने आज इस जगह पर है जा, वो वक्त के जीवन के बारे में बोला।
1: हाँ, यानी कि आज से लगभग 70-80 साल पहले की बात हम बोला था, हमारे बाप सभी जो पाका रहन जा, शादी शुदा रहन जा, जो लड़का रहल तो बहुत दुख उस समय में हमने के माँ बाप के सब कोई के तनी ज्यादा लड़का रहा है तो कमती है
2: प्लानिंग
1: हाँ तो लिकोल जाए के लिकोल तो बहुत दूर रहा, दू पथल तीन पथल चल के जाए के फॉर एग्जाम्पल एगो थोड़ा एगो उदाहरण देव है, फोंजिसाक के लड़का गाँवे के लिकोल जाता हल लगभग 4-5 किलोमीटर चले, तो लड़का लोग नहीं जाए लिकोल, घर रहे जाए अपन माँ बाप के लामे दे कारों में, दुख बहुत रहल। हमने तनी सन हमार जब समय आल तो तब भी बहुत मुश्किल रहल, है बाप तो जाए कारों में काम करे, कान काटे जाए, माँ तो गाय पोसे बकरी पोसे, लेकिन अकेले नहीं सही करे, तो लिकुल जाए के आगे हमने के परे 7 बजे या 6 बजे उठ के जाके एक बस्ता घास काट के आके तब हाली हाली लिकुल जाए सा तब सकनी से हमने अपन गुजारा करी। बहुत बहुत काढ़ा रहा उस समय में, और हबी जो सुविधा वाले का लोग के वो नहीं रहा, तो एक खातिर हम बोले खोया थे कि उस समय हमने गैसे हुई नहीं जा पढ़े के, मैं ओकर ले आगे जब जाप सा तो हमने के माँ बाप पढ़ल नहीं रहा, लिखुलते रहा तनको पढ़ा नहीं रहा जा, लिखल नहीं था, नाम नहीं जाता ना सीए करे, तो ई खातिर उस समय में वो लोग के तब वोते करे के भी दुकाने रहा, जहाँ जाने के सीए करे के तब इतना हमने के चला भाग बनाए के कि बाद में बड़ा बड़ा विद्वान लोग जा, जैसे कि पंडित विश्वदयाल भटका में गैलन जा सगरे सगरे, हमने के माँ बाप के सिखैलन जा अपन नाम लिखे के
0: लिम पकड़े के
1: नाम लिखे के तब सकलन जा जाके वोते करे, हाई वोते करलन जा पहला वो पहला आला मिल सका हाँ चुत के इलेक्शन में, तब जब देखबा कैसे तो आज कागाचित के इलेक्शन से जब इधर होल तो कितना प्रगति शुरू होल, जब हमने माँ बाप बोते कर लग, एगो उदाहरण के रूप में बोला था, उस समय में 500 वीएस नहीं मिले, 500 वालिद 500 विधवा लोग के एक को 500 हुए नहीं मिले, हम जब तो हाँ सकब बोले कोई मलाद रहे जब जाए सिक्रित सोशल एग्जिस्ट हुए नहीं रहा, तो कोई बीमार हो जाए तो जाए जिस पहुँचिया या लोपिताल तो हौजा दुखते एगो सर्टिफिकेट में निकाल दे तो FMEA लग जाए तो FMEA ओकरा को वाउचर दे 10-20 रुपया के, ऐसे रहा बाद में चल के स्वीकृति सोशल खुलल लगभग 1900 में, तब हमने के जो अथी लोग हमने के देपिते लोग हम जा हमने के संविधान में हमने के अथी में हमने के पालमा में मोशन रखल जा चाह बूढ़ा लोग के पहुँचवा मिलेगी 1900 में पहला

0: हला जाके पांचवें वेयस मिलल ओहो में जन पुरुष लोग के बोला कि स्वसंता में महिला लोग के स्वसंता में ऐसे उस समय में पांचवा रहल 15 रुपया 15 रुपया से आज दिखाने से कितना होगा बाकी 17-18 हजार रुपया
1: तो इतना एक उस समय रहल जब अभी बतवा पुरुष और महिला के पांचवों के उम्र भी बराबर नहीं रहल मतलब उ बखत जब काम भी करबा तो पुरुष के जो लापे मिले और औरत लोग के जो नापे मिले वो खेत में वो भी बराबर नहीं रहे
0: बहुत है हमरा याद करा देला उस समय में पुरुष के नापे रहे काम करे में अति काम करे के कारो में जब काम करे तो 4 रुपया मिले दिन भर के मैं 2 रुपया उठाना में 2.5 रुपया बोला सर तो उतना महिला लोग के मिले कितना डिस्क्रिमिनेशन रहा हाँ। बहुत रहा डिस्क्रिमिनेशन ऐसे तो बहुत उदाहरण सकब दे ये सब अधि में और नौकरी के क्षेत्र में भी अभी तक बतिया नहीं जा जैसे और कैसे अभी सिक लीव मिलेला लोकल लीव मिलेला
1: सब
0: नहीं रहा कुछ सबसे पहला ये तो हमने के जाना भाग मनाई के मेरा फ्रा ट्रांसिस में दुखतिया कीरे आइलैंड वो मांग कर लन तब जाके हमने के हाउ पोमेमे के लेबर डे मिलल पहला हला मिला हुआ ट्रांसिस में आज तक ले कौन सी पब्लिक है एगो अधी और जितना कम करवा लोग के अधिकार जनबा मिलेलन
1: जरूर सुखेंद्र रामदास जी अभी जन कहानी सुनेलन हमने के पिताजी लोग के दादा दादी लोग के जमाना के और फिर हुआ से ये कहानी शुरू होके आज कहाँ पर पहुँचल है जा थोड़ा एक बारे में आपके का जुड़े के बा
2: किरण जी हाउ जमाना और बीच के जमाना बोलब सर और अभी के जमाना
1: हाँ।
2: ठीक तो सकब सो गए 3 एताप में बोलिए
1: जरूर
2: हमको तो याद है लिट्टी हमारे दादी के से नानी लोग लिट्टी पकावत हलन जा उस समय में
1: आज लिट्टी एगो लुक्स हो गल बा उ बखत हाँ। आप बोल बा हाँ। उ लिट्टी पकत रहल काहे कि तकारी नहीं बा त खाली लिट्टी खा
2: और लिट्टी में प्याज काटे पीमा काटे सब संगीत के बेल के तो चूल्हा में
1: सैंक
2: चूल्हा में ओके सैंक और जो मोटा रहल एपे रहल तो ओके और चिमटा बोलते नहीं सब लोग चिमटा से पकड़ के तो ओके आग में उलाटा और इसी को घूले कर तो उस समय में लिट्टी रहल मुरुंग के डंटी के बुयो पकत हर आए तो हाउ जमाना रहल तो धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे हमने के जीवन देश में बदले लगल आदमी लोग काम करे लगल ढाका से
1: अब गांव बसे के शुरू हो
2: गांव बसे के शुरू हो
1: मौसम शुरू हो
2: मौसम तो अभी बोल अब से ना
1: हाँ
2: हाउ तो तुल के घर
1: हाँ
2: लपाई के घर से निकल के तब तुल के घर शुरू हो लाहो नीचे सगरो लकड़ी रही तो लाहो रूफ जोन बोला मचान उतोल रहा तब तोल के बाद तब आल ब्लॉक मिराई ब्लॉक फिर लाहो तोल
1: हाँ।
2: तो फिर दूसरा फिनाल जो बिता होल ब्लॉक तब बीतों के दाल
1: सिक्लोन में कहे सब कुछ बर्बाद हो जाता रहा बार बार सिक्लोन आई
2: जैसे देश में हर हमेशा सिक्लोन का होल तो सब कोई जाने लगा कि कितना अति दिगा कर ले रहा तो जैसे जैसे सिक्लोन अति बढ़ले आल तो उसे उसे हमने के जीवन हम योगे होल घर सब बनाई के
1: जी।
2: और खाए के भी तो सब्जी सब कोई लगल रोपे पमदामू रोप आलू रोप आगे के जमाना में तो वो थोड़ा जमीन पा तो घर भी कोई कुतुमिली जीते लाके सब अपने रूप अब
1: सब कहे कि सब कोई तो किसान में रहा
2: किसान रहा
1: सब कोई तो मजदूर ही रहा हाँ। माटी में प्लांटे हुए के लोग के काम रहा तो अब अपन जमीन में प्लांटे के सब कोई के किसी बोल जाए ग्रीन थम हाथ अच्छा रहा
2: हाँ, हाँ।
1: प्लांटे के तो जाना तो रंजा कैसे प्लांट बा तो वो सवाल ही नहीं पैदा हुए कि उन्हें जमी
2: एग्जैक्टली
1: हाँ
2: तो हाई सब तो हो इस तरह इतना सांसे हो गया अभी की जब जीवन दिखवा तो बहुत सुविधा बा अभी तो टेलीफोन करके बोल बा कि एगो पिज्जा आन एगो कंटकी आन तो
1: दालपूरी हर कोना में मिलेला आगे के समय में दालपूरी पकाए के कितना
2: हाँ वो एगो एगो बोल बा लुक्स नहीं रहल है
1: नहीं
2: अभी तक लुक्स

0: हाउलेपोक में एगो घर में दाल पूरी पकाई के अब तोरा चला दाल किन के आने की आटा जस्ती किन के अनुभव तो हाउ सब गते गते गते गते और दाल पूरी भी थोड़ा देर से आ जस्ती के आगे तो पराठा बोलते नहीं सर लिट्टी से छोड़ के देने सब पराठा और शादी में ब्याह में जेब तो पूरी थोड़ा मिली सात गो तकारी मिली तो ऐसे हमने के पूर्वज लोग हमने के मजदूर लोग काम करके अलन जा और आज हमने के देश में इस स्थिति से हमने जिया थी सर
1: जरूर अब हाँ
2: एक में हम कुछ जोड़े गए रही तो उस समय में हमारे देखे से हवे लिट्टी जो रहा आज पिज्जा बोल एलन से की काम
1: ओके हाँ अगर मैं टॉपिंग्स डाल के
2: हाँ तो वो उस समय में बहुत गरीबी रहा गरीबी इतना ले रहा कि आदमी के घर में खाई के नहीं रहे लेकिन इतना ले कोऑपरेशन रहा हमने के पड़ोसी में जो हमने के पड़ोसी कि हमने नहीं सब सब भूखा देखे हाई रहा आज हाई चीज वहाँ नहीं लौकेला हम अपन अपन देखे लन जा सब कोई पहले तो बागाज नहीं रहा सकबर चल जाए बाजा लाग कैसे बोला था को तो मिली जैबा तो हबी पहला किने के आगे नहीं पड़े किने के कागज पुलिया नहीं पड़े किने के बुगम नहीं पड़े किने के ये सब सुविधा रहा उस समय में हालांकि की वहाँ गरीबी रहा तो और
0: तोहर यहाँ कुछ कमती बा तो तू दे देवा हमारे यहाँ कुछ कमती बा तो हम दे देवा
1: बॉटर सिस्टम बहुत हुआ रहा जब तू पोमदामू प्लॉट था वा और पोमदामू के रिकॉल्ड होल तो आप अपन पड़ोसी के देवा आपके पड़ोसी यहाँ जोन लेगी बा तो ऊ तोहरा दे
0: और शतु जोन पहला रिकॉल्ड होता है
1: बॉटल जाता है
0: तो ऊ बॉटल जाता है पहला तो वाजे यहाँ और परिवार यहाँ हमेशा जब पोमिया रिकॉल्ड हो तो ऊ बेचाय नहीं ऊ पता से करब सर भगवान के चढ़ाव
1: सर आप पता से
0: तब बरकत हुई हमने के ऐसे जिंदगी रहा
2: हालांकि ये सब रहा लेकिन दुख भी रहा लेकिन दुख में हमने खुशी से जिया था निशा मनोरंजन भी हुए जैसे घर में रामायण हुए रामायण पाठ हुए सगुरु जाए सा बैठका में जाए सा मंदिर में जाए सा ये सब मनोरंजन रहा हालांकि दिन भर काम करी सा माता पिता लोग काम करा था ना दिन भर मैं शाम के वो लोग के एक वो समय मिल जाता है जाए के और हालांकि कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा आधी है पेट्रोल के सिराग से हमने पढ़ा नहीं सा बाद में जाके इतना इलेक्ट्रिसिटी मिला पानी नहीं रहा फजर हाई था बड़े चल के जाए के लगभग कब दिशा में तौसा में
1: पानी भरे के
2: पानी भरे के
0: हाँ,
2: जाके पानी भर के आना तब ले खोल जा हाँ गमेल में आना और बारीक भरा तब जा जब मैं सकी सेवी हुई टेलीफोन ही सब इतना सपना रहल नहीं रहल टेलीफोन ही करके मन करी तो जेबा स्टेशन में पा कहाँ
1: तो हर बात के बात है टेलीफोन
0: बहुत बात
1: के बात है हाँ स्टेशन में भी नहीं रहल एगो समय में
2: हाँ और एगो लड़का वालों काजवे में जाके पढ़े के विदेश में तो हम मन में बतियाए के अभी तो बतिया ले वहाँ प्लास उस समय में घर से निकल के पड़े आई के काशी एगो अथी रहा एगो बिगो रहा हौजा से बतियाबा वो आगे लड़का के बोल दा हाई दिन के है लिया बतियाम हाई जा जाइबा वो बहुत प्रॉब्लम रहा
1: और चाहे पे करे के
2: हाँ पे बहुत महंगा
1: पैसा नहीं रही था कहाँ सब वो नहीं तब एगो चिट्ठी लिखबा वो चिट्ठी कितना दिन के बाद हुआ पहुंची तब हुआ से चिट्ठी लिख के यहाँ भेज जाए तब नोवेल मिली
2: हाँ कोई बीमार हो जाए उस समय में तो जिस पास तो दूर रहा और लोपिताल तो जस्ती दूर रहा हमने के पहले लोपिताल सिविल आए के त्रियोले गांव बे मैम चिराफे से तो दूर हो जाए एगो रिवाज रहा उस समय में कोई सीख जाता है पिकिया करे के और दुखते देरी पिकिया तो वो एफ एम ए न दुखते मैं एक घरे घरे जाके पिकिया करा था अंजा हमारा याद बात
0: हाँ।
2: आप लोग के भी याद हो अभी वो सब नहीं बा अभी जेबा जैसे एगो प्रॉब्लम बा जेबा लोपिताल या जिस पास अभी दुखते कौनसिलते करी एफ एम ए उधर तांसो देखी ताशो तो पहले तो नहीं रहा उस सब हमने देख नहीं नहीं कहीं
1: जितना बीमारी आज बा इस बीमारी कहाँ सुनात रहा लगे
2: नहीं सुना
1: नहीं कौन से या का ये सुन ले रहा था हर जमाना में अभी तक दस में से एक जना के कौन से या बा
2: और इस सब जाने लाना इस सब खाए पिए में आवे ना
1: खाए पिए में और आप कितना एक्टिविटी कितना गतिविधि करता हुआ तो आप कितना पोजे अच्छा मी के जो दे बा पोजे रहेला देर वो लोग तो

0: खेत में काम करता रहना जा, सब डिपॉजिट हो जाता।
1: और आज जस्ती तनी अथी तंबाकू शराब इसब
0: बना जाने प्रोसेस फूड किस बर्गर सोसिस जिबे अवेले ला हर एक कितनो परहेज करवा प्रोसेस फूड खाते ही सा आगे कौन सी खाते रही सा जन खेत में बाहर भी खाई बना प्रोसेस फूड कहाँ कोई किनात रहा
2: और आगे दवाई नहीं डाला था नहीं सब जब दवाई नहीं डाला था हर तो तुम्हारा फ्रेश फूड मिले अब यो के बियो बदे रहन सब
0: सब में फैसिलिटीज ऑफ
2: सब में फैसिलिटीज हां
0: इस चीज से दे सकते से और जब खाई पिए के बात करा था और अभी मनोरंजन बोला भले ही दुख के दिन रहल लेकिन सुख भी रहल और मनोरंजन रहल आप लोग के जमाना में सिनेमा के बाद हमने ढेर देख ले जा और ढेर सुन ले भी है जा हमार जो एगो तेज रहल उस सिनेमा के जो प्रभाव रहल हमने के समाज में हमार पहला तेज यही पर रहल कि आप लोग के जमाना में सबसे बड़ा मनोरंजन साथ में आप लोग के लेस्पिरेशन पढ़े लिखे के हिंदी बोले के और फिर ढेर देखते जा ढेर कोई गायो के बखत सीखलन जा तो जो हिंदी गीत बा और कलाकार बा पहनावा भी आप लोग के जो रहल ओकर से देख देख के आपके यहाँ पर मॉरिशस में पहनावा भी बदले के शुरू होल गाय बकरी संग रहते रहते आप लोग हमने के पिताजी माताजी लोग अच्छा पहनावा ओढ़े के भी सिखलन जा थोड़ा आप सिनेमा के प्रभाव पर बोला
1: हाँ उससे पहले हम मनोरंजन जब बोला थोड़ा तो सिनेमा के साथ साथ भजन कीर्तन ये सब आवेला
0: जी
1: तो हमने भजन कीर्तन वो सब सीखनी जा बैठका बैठका के प्रभाव हुआ गांव गांव में एक गांव में 5-6-10 बैठका रहा अभी तो नहीं बा और जाए बैठका तो हौजा पर्व मनाए सा दिवाली होली ये सब मनाए से सब रामनवमी तो हौजा पर यज हवन पूजा पाठ हुए प्रवचन हुए तो साथ साथ मनोरंजन भी हुए गीत उत हुए हारमोनियम तबला ढोलक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहल तो ऐसे ऐसे ये प्रभाव पड़ल हाँ अब सिनेमा के विषय में जब आवब सा तो गांव गांव में सिनेमा रहल हमार ख्याल से उस समय में लगभग हो सकेला 40-50 या 50 से जस्ती लासाल सिनेमा हुई मोरिस में लेकिन आज उंगली में गंदे बा कई गो बा नहीं बा आज तो काहे रहल तो हमने के यही एगो साधन रहल मनोरंजन के तनी खा पी ले सब बनाने में से तू लैका फैका लोग ऐलन जा उन लोग के लेके चल रहे सा सिनेमा देखे और जो जैनजा रहनी से तो हमने हर समय के जाए सब फिल्म देखे हो जाओ अति हाइये हमने के एगो मनोरंजन रहा टेलीविजन तैने रहा बाद में आ ली था सोशन मतलब सोशन सैक में हमें देखे सोच हमारे जहाँ तक ले याद बाटे आहो जब आज शुरू में तो सिर्फ 1.5 घंटा हिंदी के प्रोग्राम चले 5 से अति और से पहले राज्यों में भी जिस 1.5 घंटा चले हमारा याद बा एगो नाम अथी अगर आजान देव अब्दुल सलाम अमादी रलाख में हमारा याद बटे हम लड़का रहनी बड़ा अच्छा लगे उनका प्रोग्राम देखा है कि हमारी आप के फरमाइश ये सब हुए तो अच्छा लगे वो उसे सिनेमा जैसे देखे सिनेमा में जो बढ़िया बढ़िया जोली जोली फिल्म रहा आजकल के फिल्म कहते नहीं रहा हमने खुशियाँ रहनी सा
2: फिल्म बोला तो चचा के यार चला मजा इंडिया दुख बीते रे बीतन भैया
0: अब सुख भरे दिन बीते रे भैया
2: अब सुख आयो रे
0: और इस सब फिल्म से प्रेरणा ले लेके मॉरिशस में कहा है कि हमने के जो जड़ी रहल भारत से बहुत करीबी से महसूस होत रहल बुझात रहा कि भारत में से हमें आल नहीं जा और जो संघर्ष वहाँ पर चला था चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में रही चाहे वो ओढ़े पहने के क्षेत्र में रही पढ़े लिखे में ग्रूमिंग के क्षेत्र में सब कोई बहुत आप लोग मनबा हमर से कि आप लोग के बहुत एगो प्रभाव पड़त रहा लेकर
2: हाँ जरूर जब लाबीमा बोलब सर
0: लाबीमा
2: तो पहले जमाने में हमरे याद बाटे कि जब लाने आवी तो दादा जब जाए दुकान में लुगा खरीदे तो जितना चचा बा जितना लेका बा सब के पौतालों से मिस पारी रही
0: हाँ और एगोस्टा से अगर मतलब कि देवानंद कि दिलीप कुमार हाँ, एगोस्टा के फॉलो कर फुलो, बजा
2: हाँ,
0: देवानंद
2: जो जो नाबीमा जो पिछला फिल्म जो निकल बाटे हाँ उस समय में तो लुगा हवे खुले रही और उसने थोड़ा अगर स्टाइल जब रही तो उसने सियावत नहीं जा तो ऐसे करके हमने के कपड़ा पहनते नहीं सा और दादा नाना लोग जब रलन से तब लोग तो धोती पहनते रह जा

0: कपार में मुसवार बांधत रंजा और कोई कोई जन कप्तान रंजा तो लोग पालतू भी पहनत रंजा तो ऐसे हमने के पहनाव रहल आगे
1: और औरत लोग भी देख बस साड़ी शर्मिला टैगोर जैसन या फिर जोन जोन एक्ट्रेस के देखें जा वैसन साड़ी वैसन चोली और बार भी के स्टाइल हाँ, भी वैसे ही
0: और किरण जी अभी बुरिया सा लहंगा लहंगा चोली सब
1: हाँ।
0: तो उस जमाने में भी हमने के जोन दादी लोग पहनतन सा तो जब देखो तो ऐसी किस्म सा जिपों
1: हाँ
0: लाहो ब्लूज रही तो हवे
1: लहंगा चोली होगा बाद
0: हाँ जमाना के साथ साथ तो खाली उगर मॉडल सांस
1: कर दिया सब
0: अरे उगर बोली सांस कर दिया सब वो लुक
1: बहुत गरीबी के जमाना रहा वो फाटल पुराना रही या नवा रही
0: हाँ फैशन जैसे जैसे बदले रहा तो उसे उसे हवे चीज वाके थोड़ा कुन माकिए करके वो लोग बदल दे
1: दादी लोग के लहंगा वो लोग के होरनी देख बता हो जो दांतेल डाल के वो लोग सियत रहन जा वो फैशन से कमती रहा
0: ऐसे करके आगे के जमाना में हमने के माता जी लोग दादा दादी लोग
1: सब कोई सीए जाने सब औरत सीए जाने बोदे करे सब कोई जाने
0: आप सब करते रहन जा हाँ। अपने आप सब करते
1: रहन जा पकावे के सीए के सब घर के काम उलोगे अपन सब काम करे
0: हाँ। आज जैसे बोला कि सिनेमा के बारे में तो हमके याद बा थियोले गांव में चाचा जी बोला था सिनेमा कासे एगो गांव अथी प्लास रहल तो हुआ पर जब सिनेमा कासे टूटल तो सिनेमा आनंद बनल फिर तादबिया बनल फिर हमने के वाजे में प्रज्ञ पापा में एगो लासाल रहल एहोश बोला देनी सा फोन दिशाक जोन गांव ढेर को जनेला एगो लासाल होशनी बोला देनी सा वहाँ पर
1: और गुडलैंड्स में तीन चार गो सिनेमा रहा
0: हाँ तो और उस जमाने में सैंक रुपी में तीन गो फिल्म थोड़ा मिली देखे के अभी तो 50 रुपये में एगो फिल्म नहीं मिली थोड़ा देखे के
1: अभी 500 रुपये में एगो फिल्म
0: जब देखे तो ऐसे करके हमने के जो हम जमाना के एंटरटेनमेंट बोली रहा सा फैमिली के संगे जेब तो फैमिली थोड़ा बन साथ गुजर बा तो ऐसे हमने के जीवन चला था उस जमाना में और जैसे चचा दिन बोलन बैठका जोन रहा लागे तो बैठका में वहाँ पर सक्षम हो गए
1: जरूर
0: राइट जब परब आवी होली जब आवी तो अब कितना दिन पहले से बोले सा कि ताल ठोंकाई
1: 40 दिन आगे
0: ताल ठोंकाई जब ताल ठोंका जाए तो अब रोज अब जा चौताल पाँच सीखे हुई पर तो हाउ जुंझावरा में जो फगुआ बोले थे नहीं सर तो वो दूसरे रहल अभी तो मॉडर्नाइज
1: फगुआ मतलब होली एगो सबसे मुख्य पर्व में से एगो रहा जो सब कोई मनाया जाए और होलिका दहन अभी फिर से थोड़ा देखते जा सगरो सगरो हुआ था लेकिन वो वक्त समझ बोलत रह जा समझ जराओ नहीं जराए बता वो होली नहीं हुई
2: वही होलिका दहन हा।
1: हाँ
2: तो एक प्रभाव सिनेमा के प्रभाव बहुत हमने पर पड़ल बा हमने पर
1: सब पर्व पर सब
2: और आज हमने बतिया थे जा अभी तक और थोड़ा बहुत हिंदी बतिया ले जा हालांकि उतना नहीं पढ़ रहे जा तो है सिनेमा के कारण सिनेमा में जो हिंदी हमने
1: सुन के
2: हवे हमने बतिया ला सा थोड़ा बहुत हिंदी से किसा बतिया अभी सिनेमा के बारे में बतिया था भाई सुखन तो हमें कुछ आप लोग के इतना जना दे कि शुरू में सिनेमा कैसे रहल त्रियोले में रहल एगो सिनेमा तो वो मोबिल कहते रहल वो एगो लापलैन कहते रहल एगो लापलैन और बारे कर दे और में है थोड़ा बाँ रहे तो एगो मोबिल आवे वो आवे तो वो फिल्म खेलावे पे ये करवा तो फिल्म खेला के उचल लाई शुरू में एक को लासा सिनेमा नहीं बना तब के बाद बोला था तब जैसे
1: तब सब कोई गांव में आके देखी
2: गांव के आदमी आके देखे तो हम तो लोग याद है हाँ, कि पहले मोबाइल आवे
1: मोबाइल
0: ओ एथि हो रहा चाचा जब एमबीसी होल जब एमबीसी आ रहल तो एमबीसी के वान आवे गांव गांव में आवत हर और जैसे चाचा बोलन तो संसुशाल रहल तो संसुशाल में एगो टेलीविजन डाल दियन सर आए तब एमबीसी के ऊपर वान आवी तो वहाँ पर खिलावत हलन सर हाँ एगो एगो सिनेमा के बाद जब एमबीसी आल तो एगो माध्यम हो रहा
2: हाँ हाँ जैसे बोला हम अभी

0: सिनेमा आनंद बनेले आगे सिनेमा काशे रहल तो सिनेमा काशे काहे नाम पर नाम नहीं रहल खाली गोलाखा सिनेमा रहल जब वो काजे हो गल तो वही सिनेमा काशे बोल
1: नाम होवे रहल
0: लेकिन ओकर ले आगे त्रियोले में एगो लाखा सिनेमा में रहल विजय विजय तो वो एगो लातात कहते रहल वही मोबाइल आवे खेला के चल रहे तक पता ना विजय लाखा सिनेमा
2: तो ऐसे मोबाइल सिनेमा चल रहा है एक में भी चाहे आपके

0: तो बाद में चल के जब गुवर्नमा है मिनिस्ट्री लाइफोमाशो जब आल सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हल गुवर्नमा के तो वो एगो मोबाइल निकाल लग समझे एगो बीस करीते रहल बिसवा जाए रोज सांझ के रात के जाए लेकिन राजो आनो से कर दे कि आज जोन मोबाइल सिनेमा यूनिट बाटे आज तेल गांव में जाए खेले तो उस दिन गांव के देखभाल सवा दो सौ आदमी जाके छः बजे से स्प्रे कर ले रहे तो वो आवे तो खिलाई मोबाइल तो चल जाए देखिए साहब मैं जाऊँ रहे और जस्ती के पोताज रहे
1: तो अभी हम ये बात करते हैं जा कैसे हमने के दादा दादी लोग हमने के पिताजी के समय के व्यक्ति लोग अपन जीवन बितेलन जा मजदूरी करते हुए कैसे अपन कठिन जीवन में वो लोग मनोरंजन भी ढूंढन जा सुख भी ढूंढन जा और आज हमने के जो सुविधा बा तो उ लोगे के ही परतापे बा ये कार्यक्रम के अभी आगे बढ़ाओ जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। ये कार्यक्रम के अंत तक बढ़त है जा और अभी गीत में सुन रहा कैसे धोती पोती पगड़ी संभाल के हमने के बाप दादा इस देश में अलन जा और इस देश के सवरलन जा और हमने के यहाँ तक पहुँचैले हवन जा, इस देश के यहाँ तक पहुँचैले हवन जा। और हमने संगे आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के चेयरमैन हवन सुकेन्द्र रामदास जी, आप हमने के बोला रामदास जी, आज हमने यहाँ बैठ के जब ये सब बातचीत कर रहे जा पूर्वज और बुजुर्ग लोग के जो योगदान रहा बा देश में बतिया थे जा, तो एक कौन ले पोतों बा काहे चाहे बतियाए के काहे आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड जैसन संस्था बा जो ये सब बात पर बहुत जोर देवेला।
1: किरण जी, हम तो पहला बोलब कि एम्बेसी और देवी एम्बेसी काजो कि हई कार्यक्रम चहला हमेशा करते रह के कोची नहीं करते रह के, बस कि हये माध्यम से हमने एगो मिसाज पासे करी ला जा। आज जोन कार्यक्रम बता चर्चा जितना चीज बचा थी सर ते एगो मिसाज है हमने के जो नया पीढ़ी आवता
0: जरूर।
1: और आप्रवासी घाट जोन है त संस्था जोन है तो हई ओकर काम है कि जोन चीज हमने के पूर्वज लोग लेके आ रहलन जा लेके चलन जा तो ओके काहे चला दुखी मौते करे के और लेकर आगे बढ़े के एक चेहला ही पर नहीं समाप्त करे के हई जोन हमने के जिसे हम बोलने कि हमने के नया पीढ़ी खाती नहीं सब कार्यक्रम होता जिसमें वो लोग के चेहला एगो जैसे बोली ला
0: जापिरासो
1: दे के
0: प्रेरणा
1: दे के समझाए के तब जाके वो लोग लेके आगे चलियन सर।
0: और ये सब बात में ढेर सीख बा कैसे हमने के पूर्वज लोग कठिनाई के सामना करते हुए ये सब कर लन जा।
1: बहुत अच्छा बोला। और हम तो बोला कि जैसे हमने के पूर्वज लोग कठिनाई करके अलन जा तो हई जोन जनासियों बा और जोन आई होला भी बा तो जिंदगी में जे परिश्रम और कठिनाई से नहीं गुजर बा तो जिंदगी क्या है। हई हमने के चला हमेशा सोचे कि जब हमने के पूर्वज लोग इतना कठिनाई से
0: अंधकार से
1: बिजली नहीं रहल पानी नहीं रहल में आज इतना सब सुविधा बाटे तो हई सब सुविधा लेके तोह लोग के नया पीढ़ी लोग के चला हमने के सोचे कि जहाँ पर आल हैं जा तो हमने के हई रखते हुए आर चहला कुछ नहीं करी के
0: जरूर।
1: तब जाके हमने के बोला ना वंश बढ़ी।
0: हाँ।
1: हमने के जब दादा दादी धोती कुर्ता पहन के आज फैशन ही यहाँ सौंसे होल साड़ी ही यहाँ आल तब फैशन बा ठीक बा सिनेमा भुलाई के नहीं चाहला हमने कहाँ से शुरू करनी जा
0: कहाँ पहुँचनी जा और हवे परिश्रम जी जारी रखा जाता है और कहाँ से कब से पहुँचे
1: दूर से कब जा पहुँचे।
0: हाँ।
1: तो ये सब चला हमने के ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम लेकर के चलते रह के भाषण करते रह के समझाते रह के
0: जरूर। चाचा जी, अभी जब रामदास जी बोलत हवन कि हमने के चाहिए प्रेरणा लेवे के कैसे कठिनाई के सामना करते हुए हमने यहाँ पहुँचल है जा, ये सब जो यादगार बा ये सब जो आज विरासत के रूप धरोहर के रूप ले बा जो हमने के बात अभी सुनैला और कहे चाहिए हमने के ये सब बताए कि कौन संदेश देवत हव तू।
2: हाँ, ये खास करके हम नौजवान लोग के एगो संदेश यही देव है कि हमने के जो पूर्वज रहन जा कितना मेहनत संघर्ष करके आज है देश के हैजा पर आनलन जा और हम उन लोग से मांग करब उन लोग के यही सुझाव देव कि हमने के चाहला वही उन लोगों के रास्ता में चले के अपन संस्कृति और सभ्यता के नहीं भुलाई के साथ में लेके चले के अपन धर्म कर्म साथ में लेके चले के। और अंत में हम यही बोले चाहब हमने के देश में आज हमने के जो जनसंख्या बाटे मिलियों लगभग 13 लाख होला ना 13 थी, लेकिन आज हमने के जनसंख्या जो सीनियर सिटीजन बा हमने के पूर्वज लोग हमने के वृद्ध संख्या बाटे 250,000 से ज़्यादा तो लगभग 62 पूसा तो उन लोग के भी हम एक सुझाव देव कि उन लोग अपन जो अपन उन लोग भी अपन खान मान में ध्यान दिए जा कहे कि हमने जो लाल से लाल है जा चाहना हमने के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देके और हमने के खान पान पर और बहुत सैंप सैंपल एग्जरसाइज करेंगे, जैसे कि चले के सब ले मेयल एग्जरसाइज हाँ खान पर ध्यान दे के, ताकि हमने और सब खुशी से जिए।
0: हाँ। और आपके जो प्रेरणा भरी कहानी बा सक बजा लड़का लोग के सुनते रहे और यही से लड़का लोग प्रेरित होके और आगे बढ़िया जा।
2: हाँ।
0: आज के कार्यक्रम में आप दोनों जना अला जा मेहमान के तौर पर अपन कीमती समय निकाल के सामने के दिन बहुत काम रहेला और इस खातिर हम आप दोनों जना के बहुत बहुत धन्यवाद देवत है और हमने के सुने और देखे हुए लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आज की चर्चा में फिर मिलब जा, अभी खातिर धन्यवाद। आपके सप्ताहांत अच्छा बीती ऐसा शुभकामना के साथ आज्ञा दा नमस्ते।
1: शुभ
3: आज की चर्चा।
4: You're listening to RM3 Radio।

0: नमस्कार परी सभी को मेरा नमस्कार समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पोटली के बंदरगाह क्षेत्र में कल भारी तेल रिसाव हुआ। लगभग 200 से 500 लीटर ईंधन लापे नदी के पानी में प्रवाहित हुआ और बहकर बंदरगाह के जलमार्ग तक पहुंच गया। आज स्थल पर सफाई अभियान जारी रहा और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इसको ध्यान में रखकर मॉरिशस मरीजों के ऑपरेशन के लिए सरकार की पहल पर भारत से दो रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं। महाराणा प्रताप सिंह के जन्मोत्सव वर्षगांठ के अवसर पर बेल विलेज में आज एक पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया अवसर पर मौजूद रहे। विदेश में पश्चिम बंगाल ने आज से एक नए राजनीतिक सफर में कदम रखा है। शुभेंदु अधिकारी ने प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ली है। ये समारोह कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लगा। इस विशेष मौके के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: You're listening to RM3 Radio Mana।

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। आज भी हम लाए हैं आपके लिए चंद बहुत ही हल्के पुलके बहुत ही सिंपल से प्रश्न जिसके जरिए हम एक लोकैलिटी का नाम ढूंढेंगे। समय समय पर हम आपको टिप्स देंगे, हम आपको हिंट्स देंगे, हम आपको संकेत देंगे और उन संकेतों के आधार पर आप हमें फ़ोन करके बताएं या तो हमें एसएमएस व्हाट्सएप मैसेज करके बताएं कि हम किस लोकैलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे नंबर व्हाट्सएप मैसेज के लिए 5250 6200 5250 6200 या तो हमारा फ़ोन नंबर 4028070 402-80-70। सो जो पहला संकेत हम आपको देते हैं, जिस लोकैलिटी की हम बात कर रहे हैं आज, जिस लोकैलिटी का नाम ढूंढ रहे हैं, उसकी जनसंख्या, उसकी आबादी 2021 के सेंसस के अनुसार 12,799 की थी, यानी कि मॉरिशस का 15वां सबसे बड़ा लोकैलिटी। मॉरिशस का 15वां सबसे बड़ा लोकैलिटी। हम किस लोकैलिटी की बात करें? आपका जवाब ऑन 5250 6200।

यकीनन आज हम कहां जा रहे हैं ये निर्भर होगा हमारे दिए हुए संकेतों पर, हमारे दिए हुए हिंट्स पर। जो पहला संकेत, जो पहला हिंट हमने दिया है, उसके अनुसार, उसके आधार पर कोई भी सही जवाब अभी तक नहीं आया है। सो हमने बताया कि उस लोकैलिटी की जनसंख्या 2021 के सेंसस के अनुसार 12,299 की थी, यानी मुशिस का 15वां सबसे बड़ा लोकैलिटी। अब जो दूसरा संकेत, शायद इसके आधार पर आपको कुछ ज़्यादा हिंट मिल जाए कि हम किस लोकैलिटी की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में इस लोकैलिटी में एक ट्रेन स्टेशन हुआ करता था जहाँ से ट्रेन मेबर्ग, कुरपिप और सूर्या की ओर जाता था। इसके आधार पर अगर आप अपना मन को दोहराएंगे तो पता चल जाएगा। और आज भी उस लोकैलिटी में एक शुमागेल होता है जहाँ पर से ट्रेन गुजरता था। सो हम किस लोकैलिटी की बात

गौरी बुला रही हैं सीटी बजा रही हैं हमने आपको बताया कि उस लोकेलिटी से एक तरफ से ट्रेन क्यूरपुप की ओर जाता था दूसरी तरफ से मेबा की ओर जाता था और तीसरी तरफ से सुया की ओर जाता था उस लोकेलिटी का नाम हम ढूंढ रहे हैं चलिए हम इनसे मिलते हैं हेलो हेलो हेलो लगता है कि हम इनकी आवाज़

नहीं आ रही हैं कोई कोई टेक्निकी वजह से, किसी समस्या की वजह से। वैसे हम बात कर रहे थे रंजन साहब से, रंजन साहब ने हमें बताया क्यूरपिप। जी नहीं, क्यूरपिप की जनसंख्या 12,000-13,000 की नहीं है, क्यूरपिप की जनसंख्या तो इससे बहुत ज़्यादा है, लगभग 60,000 की है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो रंजन साहब ने हमें बताया कि

अब की बार कोशिश करते हैं। हेलो, नमस्कार। ओहो, रंजन साहब की लाइन कट गई। सुख रंजन साहब ने हमें बताया कुरपिप नहीं, ये कुरपिप की बात नहीं हो रही है। थोड़ी देर में हम आपको देंगे एक और संकेत जिसके जरिए आप हमें बता सकें कि हम किस लोकेलिटी की बात कर रहे हैं।

सो तीसरा जो संकेत हम आपको देते हैं हिंट हम देते हैं एक जमाने में वहां पर शक्कर का एक कारखाना हुआ करता था एक जमाने में वहां पर शक्कर का एक कारखाना हुआ करता था

संजय के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आज हम एक ऐसे लोकैलिटी को ढूंढ रहे हैं जिस पर हमने आपको तीन हिंट्स संकेत दे दिए। सबसे पहला संकेत कि 2021 के सेंसस के अनुसार उस लोकैलिटी की जनसंख्या पॉपुलेशन 12,799 की थी, यानी कि मॉरीशस का 15वां सबसे बड़ा लोकैलिटी। दूसरा संकेत जो हमने आपको दिया कि प्राचीन काल में उस लोकैलिटी में एक ट्रेन स्टेशन हुआ करता था, जहां से ट्रेन एक तरफ से मेबर की ओर उतरता था, दूसरी ओर से क्यूपिप की ओर जाता था और तीसरी ओर सुलियाक की ओर जाता था। सो इससे आपको संकेत मिल गया होगा कि कहां पर वो जगह पाई जाती है। जो तीसरा संकेत हमने आपको दिया और इससे आपको यकीनन बहुत ही ठोस संकेत है कि एक जमाने में वहां पर शक्कर का एक कारखाना हुआ करता था, एक जमाने में, यानी कि अब नहीं है। शोभा जी ने हमें बताया मिडलैंड्स, जी नहीं, मिडलैंड्स में शक्कर का कोई कारखाना कभी पाया नहीं जाता था। रंजन जी ने हमें बताया क्यूपिप में भी शक्कर का कोई कारखाना नहीं पाया जाता था। आशा जानू जी ने हमें बताया सुयाक नहीं, ट्रेन वहां पर से निकल के सुलिया की ओर जाता था, सो इट इज नॉट सुयाक। आप भेजते रहिए आपके मैसेजेस ऑन 5250 6200। थोड़ी देर में हम आपको देंगे अगला संकेत।

So, जितने भी टिप्स जितने भी संकेत हमने आपको दिए उन संकेतों के आधार पर उमा जी ने हमें सही जवाब दिया। उमा जी जो एक्वाया के रहने वाली हैं, उससे पहले संध्या जी ने हमें पुतुदो से फोन किया और बताया कॉन्स्टांस जी ने, कॉन्स्टांस की बात नहीं है, हमें नहीं लगता कि कॉन्स्टांस में दो सिनेमा घर भी हैं या थे, लेकिन जिस लोकेलिटी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर दो सिनेमा घर थे। वहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन भी हुआ करता था जहाँ से ट्रेन एक और क्रिपिप की ओर जाता था, एक और मेबर की ओर और तीसरी ओर सुया की ओर। साथ ही साथ वहाँ की जनसंख्या 12,799 की थी, दैट वाज इन द 2021 सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस। वहाँ पर एक शक्कर का एक कारखाना भी हुआ करता था जो अब बंद हो चुका है। सो सही जवाब उमा को मिला, देखते हैं किसी और के पास सही जवाब आता है या नहीं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 52 50 62 00।

धीरज भाई ने हमें फोन किया और उन्होंने बताया पाई तो बहुत दूर निकल गया जी, नहीं ये पाई की बात नहीं हो रही है। सो जो अगला संकेत हम देते हैं आपको, देते हैं थोड़ी देर में।

संध्या जी हमें फोन करके बता रही हैं रिज्वी नहीं ये रिज्वी भी नहीं है सो जो अगला संकेत हम आपको देते हैं इस लोकैलिटी में एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है जिसके साथ भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ है इस लोकैलिटी में एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है जिसके साथ भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़ा है

इस लेटेस्ट संकेत, इस लेटेस्ट हिंट जो हमने दिया, उसके आधार पर बहुत ही आसान हो गया ढूंढने का कि किस हम किस लुकाई थी की बात कर रहे थे। सो जो पहले संकेत हमने दिया कि उस लुकाई थी की जनसंख्या 12,799 2,799 की थी, दैट वाज इन 2021 सेंसस। फिर उसके बाद हमने बताया कि वहाँ पर प्राचीन काल में एक ट्रेन स्टेशन हुआ करता था जहाँ से ट्रेन मेबर्ग, क्यूरपिप और सुयाकियो जाता था। आज उस वो ट्रेन स्टेशन नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो शुमैगिल हैं, एक रास्ता है जिसका नाम रह गया है शुमैगिल, जहाँ पर से रेल गुजरता था। एक पुल भी है जिस पर से रेल गुजरता था सुयाक जाने के लिए। एक ज़माने में वहाँ पर शक्कर का एक कारखाना हुआ करता था जो आज बंद हो चुका है और जिसकी जगह पर एक शॉपिंग मॉल खड़ा हुआ है। एक ज़माने में वहाँ पर दो सिनेमा घर होते थे, यानी पलाडियम और दूसरे का नाम मैं भूल गया हाँ कैपिटल, जी हाँ कैपिटल। सो ये दो सिनेमा घर वहाँ पर होते थे। और जो लेटेस्ट संकेत हमने आपको दिया उस लोकैलिटी में आज एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है जिसके साथ भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ है, और हॉस्पिटल का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल। रंजन जी ने हमें सही जवाब दिया, उमा जी ने हमें सही जवाब दिया, और भाई कविश जी ने हमें सही जवाब दिया। और जो आखिरी संकेत हम आपको देते हैं कि ये लोकैलिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 11 में पाया जाता है। ये लोकैलिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 11 में पाया जाता है। अगर अभी तक आपको पता नहीं चला है तो अब आपको यकीनन पता चल जाएगा। 52 50 60 00 अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं इन प्रश्नों के विषय पर,

सगों बाकी सरोजिनी जी ने हमें फोन किया और उन्होंने भी हमें सही जवाब दिया। रिपाई की एक बहन ने हमें फोन किया और उन्होंने भी सही जवाब दिया और सही जवाब बेशक है रोजबेल। जनसंख्या 12,799, मॉरिशस का 15वां सबसे बड़ा लोकैलिटी। प्राचीन काल में रोजबेल में एक ट्रेन स्टेशन हुआ करता था जहां पर हम कहते हैं मदान लुलू, और वहां से ट्रेन मेबर की ओर उतरता था, क्यूरपिप की ओर बढ़ता था और सुलिया की ओर भी जाता था, और जो ट्रेन सुलिया की ओर जाता था वो शुमैगेल पर से गुजरता था जो आज भी पाया जाता है। साथ साथ रोजबेल पर शक्कर का एक कारखाना हुआ करता था, रोजबेल शुगर एस्टेट, जो आज नहीं है और जहाँ पर एक शॉपिंग मॉल खड़ा है। एक ज़माने में वहाँ पर दो सिनेमा घर होते थे जिनके नाम कैपिटल और पैलेडियम एक दूसरे के बगल में थे। इस लोकैलिटी में आज एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, और ये लोकैलिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 11 में पाया जाता है, व्यू ग्रांपो रोजबेल। जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया, जिन्होंने जवाब देने की कोशिश की, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए और आपके पार्टिसिपेशन के लिए। अगले शनिवार को एक और ऐसे ही रोचक गेम लेकर हम आएंगे। बता देते हैं कि आज जिन्होंने हमें सबसे पहले सही जवाब दिया वो थी उमा जी। उमा जी आपको बधाई, आपने सही जवाब काफ़ी पहले दे दिया था। अन्य लोगों को शायद ज़रा समय लगा लेकिन आप सबों ने हमें सही जवाब दिया। सो फिर से मिलते हैं थोड़ी देर में, आप पुराने गीतों का पुराने नगमों का प्रोग्राम सुनेंगे, जबकि हमारी आपकी मुलाकात रेडियो मनोरंजन पर गुरुवार की शाम हो रही है 5:30 बजे। प्रोग्राम होगा राम रसधारा। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय मॉरिशस।

0: घड़ी मिला जी, इस समय मॉरिशस में शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। आप सुन रहे हैं आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. पुराने नगमे,
0: जहाँ दोस्तों स्वीकार कीजिए अपने हौसला दोस्त आचार्य प्रताप सिंह सितालू का प्यार भरा नमस्कार। इट्स अ वंडरफुल लवली सैटरडे इवनिंग, शाम के 5:01 और आज इस सैटरडे 9 मई 2026। सुबह जो वादा किया था हमने आपसे रेडियो मॉरिशस पर, उस वादा को निभाने के लिए हम आए हैं और इम्प्रूव रेडियो मनोरंजन पर पुराने नगमे प्रोग्राम अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। और आज इस प्रोग्राम को हमने एक नया ट्विस्ट दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दो फिल्मों के बारे में, एक है फिल्म तोहफा और दूसरा है कयामत से कयामत तक। सो इन दोनों फिल्मों पर आज हम बात करेंगे, इन फिल्मों के कलाकारों के बारे में, इन फिल्मों की म्यूजिक के बारे में, लिरिसिस के बारे में एंड सो मच मोर। और इन दो फिल्मों के गीत हम चलाएंगे और पहले हिस्से में होगा फिल्म तोहफा के सभी गाने, उसके बाद दूसरे हिस्से में होगा कयामत से कयामत तक के सभी गाने। सो गेट रेडी इन द वर्ल्ड ऑफ सुवेनिर नॉस्टैल्जिया, ओल्ड इज गोल्ड। यादों के सफर में आप भी हम सफर बन जाइए। हम जानते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद है है कि नहीं। और पुराने गीत की बात जब हम करते हैं तो क्या कहें। यस, चलिए शुरू करते हैं फिल्म तोहफा के एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। और इस गीत को आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

1984 की एक बेहद लोकप्रिय फिल्म थी ये, जिसका नाम है तोहफा। इसका निर्देशन के राघवेंद्र राव ने किया था और इसमें जितेंद्र जयप्रदा श्रीदेवी ने भूमिकाएं निभाई थी। यह फिल्म दक्षिण भारतीय शैली की मेलोड्रामा, पारिवारिक भावनाओं, त्याग और मनोरंजन का मिश्रण को प्रस्तुत करती है। कहानी दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ही व्यक्ति से प्रेम

करने लगती है, यानी कि श्रीदेवी और जयप्रदा जितेंद्र से प्यार करते हैं। प्रेम त्याग और गलतफहमियों के कारण रिश्तों में तनाव पैदा होता है। फिल्म पूरी तरह भावनात्मक संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है। इस दौर के दर्शकों को यह कहानी बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें बलिदान और परिवार की भावना को बड़े नाटकीय अंदाज में दिखाया गया। श्रीदेवी ने अपने चुलबुले और भावुक अभिनय से फिल्म में जान डाल दी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा याद की जाती है। वहीं पर जयप्रदा ने शांत त्यागमयी बहन की भूमिका को गरिमा के साथ निभाया और जितेंद्र, उसके बारे में क्या कहें, उस समय जंपिंग जैक के नाम से मशहूर थे और उनका ऊर्जा से भरपूर अभिनय तथा डांस दर्शकों को खूब पसंद आया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो सिनेमा घर खचाखच भरे हुए थे भारत में। एंड आगे की फिल्मों की बात ही कुछ अलग थी। जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ होते उनकी भूमिका और जिस प्रकार से वो लोग बात करते थे फिल्म में एक्टिंग, ऐसा लगता था कि सचमुच हो रहा है आपके सामने, है कि नहीं। तो चलिए इसी फिल्म का और एक गाना सुनते हैं, तोहफा तोहफा टाइटल सॉन्ग, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में।

फिल्म तोहफा का संगीत 1980 के दशक के हिंदी सिनेमा की पहचान माना जाता है। इस फिल्म का संगीत बाप्पी लहरी ने तैयार किया था। उस समय डिस्को, तेज बीट्स और भावनात्मक धुनों का दौर था और इस फिल्म के गीतों में इन सभी का मिश्रण दिखाई देता है। गीतों को किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाए हैं। संगीत में रोमांस, पारिवारिक भावना, नृत्य और मनोरंजन का पूरा मसाला मौजूद है। डिस्को और लोकधुन का मिश्रण भी है इस फिल्म में। बाप्पी लहरी उस दौर में डिस्को किंग कहलाते थे। उन्होंने पश्चिमी वाद्य यंत्रों गिटार और हाई बीट्स को एक साथ मिलाकर इस फिल्म में म्यूजिक का सहारा दिया। इसी कारण फिल्म के गाने आधुनिक भी लगे और भारतीय दर्शकों से जुड़ाव भी बनाए रखा। फिल्म के कई गाने सुपरहिट हुए और रेडियो कैसेट तथा शादी ब्याह में लंबे समय तक बजते रहे। तोहफा तोहफा, प्यार का तोहफा में अभी आपने इस गीत को सुना। ये फिल्म का जबरदस्त गीत था। इस गाने में तेज ताल, मजेदार बोल और रंगीन प्रस्तुति थी। श्रीदेवी की ऊर्जा और नृत्य ने इसे और लोकप्रिय बना दिया। यह गाना 80 के दशक की पार्टी शैली का प्रतीक बन गया था। प्यार का तोहफा तेरा एक भावुक और मधुर गीत था। इसमें प्रेम और त्याग की भावना दिखाई देती है। धीमी धुन और भावनात्मक गायन ने इसे यादगार बना दिया। और एक गाना है इस फिल्म में, एक आंख मारू तो, हल्का फुल्का और मनोरंजक गीत है। इसमें हास्य नृत्य और चुलबुलापन है जो उस समय के व्यावसायिक सिनेमा की खास पहचान थी। और किशोर कुमार की आवाज ने रोमांटिक और चंचल गीतों को जीवंत बना दिया। आशा भोसले ने तेज और आधुनिक शैली वाले गीतों में ऊर्जा भरी और लता जी की मधुरता ने भावुक गीतों को गहराई दी। और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ की दक्षिण भारतीय संगीत की मिठास का स्पर्श दिया। और 1980 के दशक में कैसेट संस्कृति तेजी से बढ़ रही थी। तोहफा का संगीत बाजार में बहुत सफल रहा और इन गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। कई गाने आज भी पुराने हिंदी संगीत कार्यक्रमों और रेडियो चैनलों पर सुनाई देते हैं। तोहफा का संगीत मनोरंजन, भावनाओं और नृत्य का शानदार मिश्रण था। यह उस दौर की व्यावसायिक हिंदी फिल्मों के संगीत का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बाप्पी लहरी ने क्या कमाल का म्यूजिक दिया है इस फिल्म में। और आज भी लोग जब इस फिल्म के बारे में सोचते हैं, ये फिल्म के गीतों को सुनते हैं, आय हाय, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। जैसे कि ये गाना

अब हम जरा फिल्म तोहफा की शूटिंग के बारे में बात करेंगे, लोकेशन के बारे में। फिल्म तोहफा की शूटिंग मुख्य रूप से भारत के फिल्म स्टूडियो और दक्षिण भारतीय लोकेशनों में हुई थी। उस दौर में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी बनने से पहले चेन्नई और बंगलुरु के स्टूडियो बंगलुरु के स्टूडियो में हुई थी, क्योंकि निर्माता और निर्देशक दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े थे। फिल्म के निर्देशक के राघवेंद्र राव तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक थे, इसलिए फिल्म के कई डंडोर सेट दक्षिण भारत के स्टूडियो में तैयार किए गए थे। गीतों और कुछ बाहरी दृश्यों की शूटिंग हुई थी चेन्नई के स्टूडियो क्षेत्रों में बंगलुरु के आसपास, तथा कुछ हरियाली और ग्रामीण दृश्यों के लिए दक्षिण भारत के प्राकृतिक इलाकों में की गई मानी जाती है। उस समय की व्यावसायिक फिल्मों में भव्य सेटों का अधिक उपयोग होता था, इसलिए फिल्म के अधिकांश प्रसिद्ध गाने स्टूडियो सेट पर फिल्माए गए थे, खासकर तोहफा तोहफा जैसा गाने। और चलिए इसे भी सुनते हैं, और एक गाना इसे फिल्म का, अलबेला मौसम, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और बेबी कविता की आवाज़ों में।

0: RM3 Radio. Radio.
1: पुराने नगमे।
2: जिस समय आप RM3 रेडियो मनोरंजन से लाइव सुन रहे प्रोग्राम पुराने नगमे और जय प्रताप सिंह के साथ शाम के 6 बजे तक, इस पहले हिस्से में हमने जिक्र की फिल्म तोहफा के बारे में और उसी फिल्म के गाने चलाए, और अभी शाम के 5:30 बजे अभी से लेकर 6 बजे तक अगली फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। और जिस फिल्म के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। यस, दैट वाज अ रोमांटिक मूवी, पिक्चराइजिंग आमिर खान, वेरी यंग, डायनामिक, हैंडसम एंड द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस जूही चावला। जी हाँ, इन दोनों पर पिक्चराइजिंग मूवी थी कयामत से कयामत तक। और उस जमाने में इस फिल्म के सभी गाने जो है एकदम प्यारे थे, सुपरहिट थे, और शादियों में, मंगनियों में, मंगनी हुआ करती थी, किसी की शादी हुआ करती थी, सो ये गीत खूब बजते थे। सो इस आधे घंटे में हम इस फिल्म की लोकेशन, शूटिंग, म्यूजिक, लिरिक्स और आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। सो गेट रेडी, चलिए सुनते हैं इस फिल्म का वो प्यारा सा गाना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपको याद है ना गाना? सचमुच पापा सोचते हैं कि बेटा बड़ा नाम करेगा और बेटा को बाप का नाम बड़ा करना चाहिए। चलिए इस फिल्म का गाना सुनते हैं कयामत से कयामत तक, द फर्स्ट सॉन्ग, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जजेस, तो अब हम बात करेंगे फिल्म कयामत से कयामत तक के बारे में इन डिटेल। कयामत से कयामत तक हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन मंसूर खान ने किया था। फिल्म ने बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों की नई लहर शुरू की और आमिर खान तथा जूही चावला को रातों रात सुपर स्टार बना दिया। क्या बात है। फिल्म की कहानी इस तरह से है। फिल्म की कहानी दो दुश्मन परिवारों के बच्चों की है, राज और रश्मि। इनकी प्रेम पर आधारित है ये। राज, आमिर खान और रश्मि जूही चावला एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनके परिवारों की पुरानी दुश्मनी उनके रिश्ते के रास्ते में खड़ी हो जाती है। कहानी में प्रेम, संघर्ष, परिवार की प्रतिष्ठा और दुखद अंत का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इसे भारतीय शैली की रोमियो जूलियट कहानी भी कहा जाता है। आमिर खान ने राज के किरदार में मासूमियत और सच्चे प्रेम को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं पर जूही चावला की चंचलता, मुस्कान और भावनात्मक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और यह बॉलीवुड की यादगार जोड़ियों में शामिल हो गई। इस फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद ने तैयार किया और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय है, जैसे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐ मेरे हमसफर, गजब का है दिन। इन गीतों ने युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। मंसूर खान ने फिल्म को सरल लेकिन भावनात्मक शैली में प्रस्तुत किया। फिल्म में प्राकृतिक लोकेशन, मधुर संगीत और सच्चे प्रेम की भावना को खूबसूरती से दिखाया गया है। युवाओं की भावनाओं को दर्शाने वाली कहानी है ये। मधुर और सराबहार संगीत, सरल लेकिन प्रभावशाली संवाद, प्रेम, दुखांत अंत का गहरा असर, इसको रोमांटिक ट्रेजेडी भी कहते हैं। कुछ लोगों को फिल्म का दुखद अंत बहुत भावुक लगा, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी बन गया। फिल्म की कहानी पारंपरिक थी, फिर भी उसकी प्रस्तुति ताजगी से भरी लगी। कयामत से कयामत तक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और आमिर खान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का सम्मान मिला। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रोमांटिक फिल्मों में से गिनी जाती है। इसकी कहानी, संगीत और अभिनय आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए है। 1980 के दशक की प्रेम कहानियों में से जबरदस्त प्रेम कहानी है ये। कयामत से कयामत तक फिल्म। इसी फिल्म का और एक गाना, अकेले हैं तो क्या गम है। आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आप अकेले कैसे हो सकते हैं कि नहीं।

जी हाँ, कयामत से कयामत तक फिल्म के गाने भी आप सुन रही है और एन प्री रेडियो मनोरंजन से। और इस फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई है चलिए हम आपको बताते हैं। कयामत से कयामत तक की शूटिंग भारत के कई सुंदर स्थानों पर की गई। फिल्म के प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ी इलाकों ने इसकी प्रेम कहानी को और भी यादगार बना दिया। ऊटी में उत्तराखंड और मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। ऊटी में फिल्म के कई रोमांटिक गीत वाले दृश्य यहाँ पर फिल्माए गए थे। हरियाली, पहाड़ और शांत वातावरण ने फिल्म को खूबसूरत रूप दिया। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी दृश्य शूट किए गए थे जहाँ प्रकृति का सुंदर वातावरण दिखाया गया। और मुंबई स्टूडियो और कुछ पारिवारिक दृश्यों की शूटिंग मुंबई में हुई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत गजब का है दिन और ए मेरे हमसफर के कई दृश्य प्राकृतिक लोकेशनों पर शूट किए गए थे जिसने दर्शकों को बहुत आकर्षित किया। और उस समय निर्देशक मंसूर खान ने फिल्म को अधिक वास्तविक और भावनात्मक बनाने के लिए प्राकृतिक स्थानों का उपयोग किया था और 1980 के दशक की फिल्मों में एक खास बात मानी गई थी, प्रकृति को दर्शाया गया था। सो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर। फिल्म का टाइटल है कयामत से कयामत तक और मुख्य सितारे हैं आमिर खान और द वन एंड ओनली जूही चावला। चलिए इसी फिल्म का और एक गीत सुनते हैं। गजब का है दिन देखो जरा, आगे क्या होता है चलिए एक साथ सुनते हैं। वाओ, आई जस्ट लव द सॉन्ग। क्या बात है आप ही गाइएगा, आवाज से आवाज मिलाइएगा। गजब का है दिन, आप कहेंगे गजब की है ये शाम। हाँ, शाम ढल रही है, अंधेरा छाने लगा।

जहाँ फिल्म कयामत से कयामत तक इतनी अच्छी फिल्म थी कि इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कार मिले। जी हाँ, और इस फिल्म को पुरस्कार मिले इसके खास संगीत, अभिनय और निर्देशन के लिए। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते कयामत से कयामत तक मूवी ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मंसूर खान, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ संगीत आनंद मिलन, यस आनंद मिलन ने जबरदस्त म्यूजिक दिया इस फिल्म में, सर्वश्रेष्ठ गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, दैट वाज द पॉपुलर सॉन्ग, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक उदित नारायण साहब, और सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी, फिर सर्वश्रेष्ठ संपादन। फिल्म की उपलब्धि कयामत से कयामत तक ने केवल पुरस्कार ही नहीं जीते, बल्कि इसने 1980 के दशक के अंत में रोमांटिक फिल्मों की नई शुरुआत भी की। इस फिल्म के बाद आमिर खान और जूही चावला युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। जहां भी ये लोग जाते थे, सभी लोग कहते थे ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज। फिल्म का संगीत, दुखान, प्रेम कहानी और सरल प्रस्तुति आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। आप चाहे या ना माने, पर दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दैट टाइम। कयामत से कयामत तक, व्हाट अ वंडरफुल मूवी, व्हाट म्यूजिक, व्हाट लवली म्यूजिक, और क्या गीत लिखे गए थे, गीतों के बोल, उसमें जबरदस्त म्यूजिक और एक्टर के अभिनय, क्या बात है। इस फिल्म का अंतिम गीत काहे सताए फ्रॉम द मूवी कयामत से कयामत तक आके अग्नि की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ ही पुराने नगमे प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहे हैं। आज जिस प्रोग्राम के दौरान हमने जिक्र की दो फिल्मों के बारे में, द फर्स्ट मूवी वाज तोहफा और दूसरा कयामत से कयामत तक, प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। 6 बजे होगा पूरा समाचार बुलेटिन। हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर, ऐसा भी होता है कार्यक्रम में। उसके बाद शाम के 4 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी रेडियो मॉरिशस पर, हम और आप प्रोग्राम 4 से 5 बजे के बीच, और 5 से 6 बजे का तो हर पसंद रेडियो मॉरिशस पर। सो कल मिलते हैं कल शाम के 3 बजे और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर, ऐसा भी होता है कार्यक्रम में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार।

0: जानते हैं आज की सुर्खियां। पोर्टलुइस बंदरगाह क्षेत्र में कल दोपहर भारी तेल रिसाव हुआ। लगभग 200 से 500 लीटर ईंधन लापे नदी के पानी में प्रवाहित हुआ और बहकर बंदरगाह के जलमार्ग तक पहुंच गया। आज स्थल पर सफाई अभियान जारी रहा और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। देश में पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में 25% की कमी दर्ज की गई। ये प्रवृत्ति बरकरार रखने के मकसद से सरकार कानूनी ढांचों को और मजबूत करने की योजना बना रही है। इसी दिशा में इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नए नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यूरोप डे के संदर्भ में राजदूत ओस्कर बेनेडिक्ट के आमंत्रण पर कल देश के कई राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव तेलफिया में एक समारोह के लिए एकत्र हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम को मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के शुरुआती दिनों की याद दिलाने वाली 56 साल पुरानी एक प्रतीकात्मक तस्वीर भेंट की गई। पोर्टलुइस बंदरगाह क्षेत्र में कल भारी तेल रिसाव हुआ। लगभग 200 से 500 लीटर ईंधन लापे नदी के पानी में प्रवाहित हुआ और बहकर बंदरगाह के जलमार्ग तक पहुंच गया। आज स्थल पर सफाई अभियान जारी रहा और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। देश में पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में 25% की कमी दर्ज की गई है। ये प्रवृत्ति बरकरार रखने और हादसों की संख्या और घटाने के मकसद से सरकार कानूनी ढांचों को और मजबूत करने की योजना बना रही है। इस दिशा में इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नए नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ये जानकारी आज मेबग में लगी एक विशेष बैठक के दौरान सामने आई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत के संदर्भ में परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों और सड़क इस्तेमाल करने वालों के बीच ये बैठक लगाई गई। इस साल सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए विषय चुना गया है सेफ वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल हेल्दी सिटीज। कुणाल गोजी, रजनी बिकर।
1: मेबक के केंद्र में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक साइकिल है। लोर रामदत्त कुछ समय से परंपरागत साइकिल बदल कर इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहे हैं। उन्होंने कहा, बचपन से 64 वर्ष की आयु तक बाइसिकल ही चला रहे हैं। काम पर जाने के लिए अभी एक इलेक्ट्रिक साइकिल लिया है। बाजार, दुकान आदि जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, उन्हें वापस घर लाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल परिवहन समस्या से बचने का एक समाधान है। फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने या फिर सामान ले जाने से खतरा पैदा हो सकता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर सड़क का इस्तेमाल करने वालों ने बताया कि उन्हें इलेक्ट्रिक साइकिल से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक साइकिल के प्रयोग की दिशा में बेहतर रूप से सहायता पहुंचाने के वास्ते कानून लागू किए जाएंगे। ये उम्र की सीमा, अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने या फिर दोनों पहियों के बीमा से संबंधित है। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने कहा, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नियम लागू नहीं, मंत्रालय के स्तर पर एनएलटीए के स्तर पर निर्देश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में काम चल रहा है। उम्र, हेलमेट पहनने, बीमा, उन सभी पर ध्यान दे रही है। संबंधित कदम उठाए जाएंगे ताकि एक ऐसे क्षेत्र में जहां नियम लागू नहीं है फिर से इन्हें लागू किया जा सके। ये बात उल्लेखनीय है कि रात के दौरान सफर करने के लिए सभी साइक्लिस्ट और साथ में सवारी के लिए भी फ्लोरेसेंट जैकेट पहनना अनिवार्य है।
0: सड़क पर आपकी सुरक्षा एक छोटी सी चूक से खतरे में पड़ सकती है और कई बार ये चूक होती है आपकी गाड़ी के पहियों की हालत को नज़रअंदाज करना। असल में घिसे हुए टायर कम पकड़, लंबी ब्रेकिंग दूरी और एक पल में हादसे का खतरा

0: कई गुना बढ़ा देता है। विशेषज्ञ आगाह करते हैं, पहियों की नियमित जांच सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि सड़क पर सुरक्षित रहने का आधार है। अदिति अवतार को सुनते हैं।
1: घिसे हुए पहिए न केवल सड़क पर वाहन की पकड़ कम कर सकते हैं बल्कि ब्रेकिंग दूरी को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए पहियों का बारीकी से निरीक्षण करना आवश्यक होता है।
2: T'as un témoin du jeu, mais le gars, tu vois, il fait tous témoin du jeu, il fait tous limite. C'est même que nous disons limite là, ça. Il fait tous limite. Alors, ben, dans le jeu, au cave, machine car, ça y est, de gros l'appli, des le, et freinage, il y a un bon freinage, ça. Ça, c'est un arbre neuf. Alors, pendant qu'il y a un danger, moi, je trouvais, c'est un gros l'appli, des le car traversé ici, je vois un téton, et au cave, un bon adhérence, un bon grip, un bon freinage.
1: पहिए खरीदते समय कुछ तकनीकी कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है।
2: Alors, ça la roule là, je peux rouler les disques pendant 5 ans. Ici là, il y a 100 Y, un indice de vitesse ça. Alors, je peux rouler les disques 300 km/h à la roule. Indice de charge, indice de vitesse, c'est Y, 300 km/h.
1: पुलिस की तरफ से चालकों को याद दिलाया जाता है कि घिसे हुए टायर के साथ वाहन चलाना कानूनन एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना लग सकता है, जैसा कि सब इंस्पेक्टर मिर्जापुदन बताते हैं।
3: जब एगो काउचू नहीं छा रहेला तो ला पुलिस जब तोहर आगे कलक और चेके कलक तो सकेला तोहरा एगो फिक्स पेनाल्टी मिले जोन के ओकर जुर्माना 5,000 है। 5,000 के जुर्माना फिक्स पेनाल्टी पड़े और पेनाल्टी पहुँच पड़े भी तोरा 2-7 पॉइंट ओकर रेंज में सकेला तोरा मिले आको तोहर काउचू नहीं छा रहा।
1: जुर्माने के अलावा पहियों को लेकर लापरवाही के दुर्घटना की स्थिति में गंभीर यहाँ तक की दुखद परिणाम हो सकते हैं।
3: हर गाड़ी चालक के ओकर दिव्या है कि अपन लाहू अपन काउचू चहला चेके करे के से पहला ओकर प्रेशियों देखा लाहू के प्रेशियों चला रिस्पेक्टे करे के जे ढेर प्रेशियों रही तो ओकर ग्रिप नहीं अच्छा रही। अब जे कमतियो रही तो देखबा कि लाहुआ कंट्रोल नहीं रही जब ओके कोंजे करत हुआ एगो काउचू के ओकर लाज है यानी कि जब ओकर लाज दे पास हो जला तो नहीं सब हवे काउचू से अभी करे दिखबा नहीं तो हवे एकलाते होता या फिर ओकर में कोनो प्रॉब्लम हो जाए। एगो काउचू के चहला हमेशा काउचू और लाहू नीमन से कनेक्टे रह के हव गाड़ी में ओकर जो हव जेकू है सब हमेशा चहला चेके करते रह के जमे गाड़ी चलाओ तो हव लाहू नहीं निकल जाए और कात्रियम जो सब आदमी करे लन सर देखे लन सर से ओकर लाहू लिस बोलना सर।
1: चालकों को गाड़ियों के अच्छे रखरखाव की आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते पुलिस और संबद्ध अधिकारियों की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता दोहरा रही है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल वुमेन्स काउंसिल द्वारा रेजी में आयोजित एक समारोह में उपस्थित डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नवामारी ने फंड्स के संचालन में पारदर्शिता के महत्व और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इस समारोह के अंतर्गत महिला संगठनों और इलाकाई समितियों को अनुदान दिए गए, साथ ही शी क्रिएट्स प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। माधवी जगन्नाथ, रजनी बिकर।
4: रेजवी ने आयोजित इस समारोह के दौरान उन महिलाओं को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने नेशनल वुमेन्स काउंसिल की ओर से प्रस्तुत शी क्रिएट्स प्रतियोगिता में बेहतर इनकाम किया। इस पहल का मकसद सिलाई और दस्तकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की रचनाओं को पेश करना। शी क्रिएट्स की विजेता तस्वर सिंह बसान ने कहा, एक दिलचस्प प्रतियोगिता है जिसकी बदौलत हम अपनी क्षमता के बारे में जान सके, पेश कर सके। ड्रॉपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अफ्रीकन ड्रेस, ये सब करने का मौका मिला। नेशनल वुमेन्स काउंसिल की अध्यक्षा आनु मुरज प्रसाद लौफे ने कहा, शी क्रिएट्स प्रतियोगिता इस साल शुरू की गई क्योंकि दस्तकारिता के क्षेत्र में काफी मांगे हैं।

0: और काफ़ी योग्य महिलाएं भी हैं जिनकी बहुत सुंदर रचनाएं हैं। वे इसे प्रस्तुत करना चाहती हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। इस समारोह के अंतर्गत देश की 9 इलाकाई समितियों तथा 400 से अधिक महिला संगठनों का समर्थन करने के लिए वार्षिक ग्रांट भी दिए गए। जानिन ओरियो ने कहा, बच्चों, घर पर रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अपने भाषण में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं जेंडर इक्वालिटी मंत्री आर्या नावामारी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के हक में सरकारी कटिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, परंपरागत कोर्स हैं, इन्हें आधुनिक बनाना चाहिए, इनमें सुधार लानी चाहिए और सोशल सेंटरों में नए कोर्स भी लाने चाहिए। महिला संगठनों पर विश्वास है, वे जानते हैं कि कैसे इस पैसे को खर्च करना चाहिए। अब से ज्यादा सोच समझकर ऐसा करना चाहिए। विगत में शायद कुछ अनियमितताएं थी, इसीलिए समय समय पर हमें याद दिलाना चाहिए कि ये पब्लिक फंड है जिसका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक फंड से पैसे महिलाओं को दिए जा रहे हैं, महिला संगठनों के पैसे नहीं हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को शी क्रिएट्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं की रचनात्मक कला को देखने का भी अवसर मिला। शी क्रिएट्स जो महिला ठेकेदारी को प्रोत्साहित करता है और साथ में उन्हें अपनी कला दर्शाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
1: खबरों को हम जारी रखते हैं। यूरोप डे के संदर्भ में राजदूत स्कॉट बेनेडिक्ट के आमंत्रण पर कल देश के कई राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव टेल्फिया में एक समारोह के लिए इकट्ठे हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्लाम को मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के शुरुआती दिनों की याद दिलाने वाली 56 साल पुरानी एक प्रतीकात्मक तस्वीर भेंट की गई। पॉल बेरांजे ने आज अपने नए राजनीतिक दल फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिव की लॉन्चिंग की। वाकुआ नगर पालिका में आयोजित कांग्रेस के दौरान एमएमएम के पूर्व नेता ने पार्टी की विचारधारा की मुख्य रूपरेखा और आने वाले महीनों के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इसको ध्यान में रखकर मॉरिशन मरीजों के ऑपरेशन के लिए सरकार की पहल पर भारत से 2 रोबोटिक्स सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं। गीता सुनारायण का विवरण पेश है।
2: 40 साल से कम आयु का ये मरीज पंक्रियास के कैंसर से पीड़ित हैं। इस बीमारी का पता केवल एक महीना पहले चला था। आज वो कई घंटों तक चली बेहद जटिल सर्जरी के बाद आईसीयू में हैं। डॉक्टर सरावना राजामणिकम कहते हैं, पिछले दिनों के दौरान हमने देखा कि छोटा देश होने के बावजूद कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा है। फेफड़े और पैंक्रियास के कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हमने देखा कि इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। सिगरेट जलाना एक मुख्य कारण है, लेकिन खान पान की बदलती आदतें और पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग भी कुछ कारण है। ये जटिल ऑपरेशन डॉक्टर दीप्ति मिश्रा की सहायता से किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अन्य सर्जरी भी निर्धारित हैं, जिससे भारतीय और मॉरिशस के सर्जन के बीच विशेषज्ञता का आदान प्रदान संभव होगा। डॉक्टर दीप्ति मिश्रा कहती हैं, हमने फेफड़े के कैंसर से पीड़ित मरीजों पर पैरास्कोपी से ऑपरेशन किया है। इस सहयोग से हम सब और बहुत कुछ सीख रहे हैं। मॉरिशन डॉक्टरों के साथ हम अपनी विशेषज्ञता बांट रहे हैं। दोनों विशेषज्ञ मॉरिशस सरकार से अनुरोध पर मॉरिशस आए हैं। वे लगभग 10 मरीजों का ऑपरेशन करेंगे, जिनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजना पड़ता। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं, एक ऑपरेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लग रहे हैं, बिना ब्रेक लिए, और हमसे एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं। हम उनका हवाई टिकट चुकाते हैं, उनका अच्छा स्वागत करते हैं। वे मॉरिशस आना पसंद करते हैं, मदद करना पसंद करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उनके साथ साथ

0: उनके ग्रुप के अन्य विशेषज्ञों को भी हमारी मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पिछले सोमवार को मॉरिशस पहुंचे ये डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी के भी विशेषज्ञ हैं।
1: भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गहलोत राजपूत महासभा की पहल पर बेल विलेज स्थित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाई गई। गीता सुनाराइन।
0: महाराणा प्रताप सिंह जयंती वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा और राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया। उनका जीवन साहस, त्याग, स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग उनके शौर्य और बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की भावना जगाती है। आज उनकी 486वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा द्वारा बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। समारोह में सभा के संचालकों के साथ साथ कई अन्य महानुभाव भी उपस्थित थे। सभा के अध्यक्ष कहते हैं,
2: आज इस जगह में हम लोग उसकी याद में जो महान आत्मा है, जो जिन्होंने देशभक्ति के लिए त्याग किया है, संघर्ष किया है, उसके याद में हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं।
0: महाराणा प्रताप की कुर्बानी और वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए। उनकी जयंती केवल उनके जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें देशभक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा की सीख भी देती है।
1: बात करते हैं रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी की धारणा पर। मॉरिशस में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स अपनी 20 सालों से ज्यादा के अनुभव के साथ इलाकाई क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित कर रही है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष के उद्देश्य वाली हिंद महासागरीय आयोग के एक्सप्लोर नामक परियोजना के संदर्भ में एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत सैंपिया स्थित इस कंपनी का दौरा भी किया गया। क्रिस्टल लिभास, गीता सुनाराइन।
0: पिछले 20 वर्षों से मॉरिशस की कंपनी डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स कचरे को प्लास्टिक ग्रैनुल्स में बदल रही है। इसी सामग्री का उपयोग कंपनी बाद में पॉलीएथिलीन पाइप और इलेक्ट्रिक कंडक्ट बनाने में करती हैं, जो निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स के को डायरेक्टर एविन कोहे कहते हैं, हमारे ज्यादातर उत्पाद प्लास्टिक कचरे से बनाए जाते हैं, जो कंपनियों से एकत्र किए जाते हैं, यहाँ इन्हें छांटा जाता है। ये स्थानीय विशेषज्ञता एक्सप्लोर एक्सपेडिशन प्लास्टिक ओसियो एंजें कार्यक्रम का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही है। यहाँ 5 वर्षीय परियोजना फ्रांसीसी विकास एजेंसी और फ्रांसीसी वैश्विक पर्यावरण फंड द्वारा फाइनेंस की गई है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इस परियोजना के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रतिभागियों को प्लास्टिक रिसाइकलिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझाने के लिए इस कंपनी का दौरा आयोजित किया। एक्सप्लोर सीओई प्रोजेक्ट के फ्लोरियन मोशाडू कहते हैं, मॉरिशस में 10 परियोजना धारकों को चुना गया है, जो अपनी योग्यता बढ़ाएंगे। ज्यादातर प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर आधारित हैं। हम स्थल का दौरा कर रहे
3: हैं।
0: उपस्थित प्रतिभागियों में इलाके के कई परियोजना धारक शामिल हैं, जो सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ी पहल विकसित करना चाहते हैं। इकोबाला रोड्रिक्स की मारी पल पियलवी कहती हैं, हमने रिसाइकलिंग कारखाने का दौरा किया। हमारा संदेश ये है कि हम नहीं चाहते कि रोड्रिक्स ऐसी स्थिति में आए कि इतनी भारी मात्रा में प्लास्टिक रिसाइकल करना पड़े। हमारा उद्देश्य है सचेत कराना, जागरूक कराना। ये मॉरिशस की विशेषज्ञता दिखाती है कि आज टिकाऊ विकास, नवाचार और रिसाइकलिंग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स के को डायरेक्टर शिवानी गोपाल कहते हैं, न सिर्फ मॉरिशस बल्कि पूरा हिंद महासागर

0: हमारी ओर आ रहा है हमारा ज्ञान पाने के लिए। इस परियोजना के तहत चुने गए प्रस्तावों की घोषणा साल के अंत तक की जाएगी।
1: 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में लगने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर एक नज़र पर बात करते हैं। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें मॉरिशस से एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा। नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। विदेश में भारत में पश्चिम बंगाल की जनता ने अपने और राज्य के लिए बदलाव का फैसला किया है। टीएमसी के 15 साल का शासन खत्म करते हुए वहां की जनता ने बीजेपी के प्रति विश्वास जताया। इस भारी जीत के बाद आज सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ली। आदित्य अवतार।
2: पश्चिम बंगाल ने आज से एक नए राजनीतिक सफर में कदम रखा है। सुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के लिए प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ली। ये भव्य समारोह कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लगा। इस विशेष मौके के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। सुवेंदु अधिकारी के साथ साथ 5 अन्य सांसदों ने नए मंत्रिमंडल के सदस्य की हैसियत से शपथ ली। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों तक टीएमसी का शासन रहा है। बीजेपी पर विश्वास जताने के लिए मोदी जी ने वहां की जनता का आभार प्रकट करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जनता के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपने राज्य और भविष्य के लिए एक साहसी फैसला लेने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता की प्रशंसा की। इस ऐतिहासिक दिन के संदर्भ में श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत इस दिन की दुगुनी खुशी मना रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन ही आयोजित किया गया है। उन्होंने गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी सीख ने समय से परे जाकर भारतीय जनता को सतमार्ग पर प्रोत्साहित किया है और भारत के विकास के सफर को स्वर्णिम बनाया है।
1: और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो रविवार 10 मई को सुबह 4 बजे तक लागू है। इस प्रकार हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को बादल घिरे रहेंगे, हल्की वर्षा होगी ऊंचाइयों पर। कल मौसम अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, आली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:29 पर होगा।

0: 6:28 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक लुडोविक को धन्यवाद देते हैं, साथ हमें पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Copain l'inter rouge mais छियासठ साल के 66 years old श्री राज मातु जिन्हें लोग राज नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी सोमवार 11 मई को सुबह 9 बजे इनकी पत्नी सीता पूर्णिमा मातू के मकान को पहले इंतजार से उठाकर बुआ मौसम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन ऑन मंडे एट 9 AM. रॉयल रोड त्यागूज में 73 साल के 73 years old श्री रामेश्वर गिरधारी जिन्हें लोग रमेश बाजौ नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रॉय रोते आहूज से उठाकर बम औशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM. एवेन्यू पांचू स्टैनली रॉज हिल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री धर्मजय भवानी दीन जिन्हें लोग किशन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान एवेन्यू पांचू स्टैनली रॉज हिल से उठाकर कोदेगांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो 1 PM. नंबर 9 रू डे ला रिनेसांस नंबर 59 120 फ्रांस में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जिन्हें लोग अनीता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी सोमवार को दिन के 2:45 इनके मकान नंबर 9 रू डे ला रिनेसांस नंबर 59 120 फ्रांस से उठाकर एली फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. आपको बता दें कि वे पहले मॉरिशस में लिबियातुवाक्वा की रहने वाली थी. क्रिमेशन ऑन मंडे एट 1:45 PM. मोहा पेचित रिविया में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जिन्हें लोग पेपे नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी मंगलवार को सुबह 10 बजे मोहा पेचित रिविया से उठाकर त्यामिनिस्ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे 10 AM. और जोली स्ट्रीट 4 में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मुंगुट्रोय की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी बाद में इनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर दुफ्रिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Nee so.

0: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 6:38 हो चुके हैं शाम के, तो आज बात चल रही है नई सोच की। यस, आज बात करेंगे हम नई सोच पे, कॉन्फिडेंस की। यस, अपने पर यकीन करना। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका मतलब होता है डर होने के बाद भी कोशिश करते रहना। कभी लोग हमें रोकते हैं और कभी हम खुद को खुद पर डाउट करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, हम स्ट्रांग इंसान कभी ना कभी इनसिक्योर ज़रूर होते हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम। चलिए आज खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और नई सोच के साथ चलते हैं, क्योंकि जब नई सोच हमारे साथ चलती है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ अपने आप निकल जाती है। इन्जॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना, साथ में जुड़े रहिए नई सोच के साथ।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों सैटरडे का दिन है और 9 मई 2026 और 6:46 हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की, और कॉन्फिडेंस अगर होता है तो सारी चीज़ें अपने आप सेट होती हैं। कहते हैं कई हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में, मतलब हर किसी को आप ये नहीं कह सकते कि हम ही परफेक्ट हैं, मैंने जो कहा वो ही राइट है, लेकिन खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है, एक छोटी कोशिश से, फिर एक और कोशिश से, और लगातार कई बार कोशिशों से हमारी ज़िंदगी बनती है और फिर हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से हमें कोई गिरा नहीं पाता। और ये सच ही है, अगर हमें एक ही बारी में ही और जो भी हमने सोचा वो उसे अचीव कर ले तो हमारी ज़िंदगी में वो खुशियां, वो खूबसूरती नहीं रह जाएगी क्योंकि हमें वो चीज़ मिल जाएगी। जब हम लगातार कोशिश करेंगे तो उसका जो टेस्ट है, जो उसकी डेवलपमेंट है, उसको निहार सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं।
1: RM3 Radio.

0: Harlem Suite Radio.
1: Nisso. दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि डर के बाद भी आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जो इंसान कोशिश करता है, बिल्कुल उसको डर लगता नहीं है और साथ में वो मजबूत होता चला जाता है। आज की नई सोच बस इतना कहती है कि खुद पर भरोसा रखिए और किसी को अपने आगे ये ना कहने दीजिए कि हाँ भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे सब सही हो जाता है, लेकिन खुद पर अगर आपको भरोसा होता है और आपका कॉन्फिडेंस आपकी ताकत बनता है, तो जो आगे इंसान बढ़ता है वो उसे कोई नहीं रोक पाता है। तो मैं हूं आपके साथ पूनम, और थोड़ी देर के बाद सुन पाएंगे आप दिलों की आवाज। मेरे साथ बने रहिए RM3 पर। रेडियो मनोरंजन आपके लिए है, ये गाना आपके लिए। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है आपके चेहरे पर इस समय एक प्यारी सी मुस्कान होगी। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़। तो बस आराम से बैठ जाइए और इस खूबसूरत रात के गानों के साथ थोड़ा और प्यारा सा साथ बना लेते हैं। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर, और अगर आपको कॉल करना है तो कर सकते हैं 4028070 पर। और आप अपने मोहब्बत भरे मैसेजेस और प्यारे गाने सुनने के लिए मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा वाला, आज आपका मूड कैसा है, कैसे वाले गाने सुनना चाहते हैं, कौन सी एरा के गाने सुनना चाहते हैं और कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस के गाने सुनना चाहते हैं। क्योंकि सबको अपना टाइम पसंद होता है, सबको, जो भी जिस टाइम पैदा हुआ उसको अपने टाइम के गाने पसंद आते हैं। तो इससे बेटर है कि अगर हम थोड़े से पुराने से शुरू करें और उसके बाद बढ़ते बढ़ते नए तक, नए दौर तक आएंगे। तो इन्जॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना मुस्कुराते हुए।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज। 7:24 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आपके ही फेवरेट प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और ये हम हैं आपके साथ, हमारी पूरी टीम है, सिर्फ आपको खुश करने में लगे रहते हैं कि जिससे आपके काम होते रहें, आप खुश रहें, आपको बहुत ही अच्छा लगे। और ये प्रोग्राम सुन के या कोई भी प्रोग्राम सुन के पूरी MBC आपके लिए इसी चैलेंज में होती है कि

0: आपको बस खुश करना है, आपके मूड को चेंज करना है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो पाएंगे, क्या बात है। तो भाई चलो कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, दिल में उतर जाते हैं। उन्हीं में से ये एक गाना था जिसमें वर्डिंग्स बहुत कम थी बट म्यूज़िक बहुत ही सुपर था। मेरा दिल भी कर रहा था यहाँ पे बैठ के डांस करने का, बट मुझे कई उम्मीद है कि आप लोगों ने जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी उन्होंने ज़रूर डांस किया होगा। चलिए जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शीला जी और लिखती हैं कि आज उनकी एल्डर सिस्टर आई हुई हैं घर पर, यानी कि सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं और वो कह रही हैं कि मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप बहन तो हैं पर मुझे एहसास होता है शायद आप माँ जैसी हैं और आपके आने से मेरे घर में बहुत खुशियाँ आई हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज शेयर करने के लिए। और सुदेवी जी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और शीला दीदी, कुशल भैया, आत्माराम भैया, मलिंगा, अनुषा, किरण, कृष्या, वंश, वैभव, वीर, निया के लिए गाना सुनना चाहती हैं। साथ में ही संजीव जी यूएसए से हैं और सबको कह रहे हैं बस सब अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा मौसम बेईमान है। तो एंजॉय कीजिए आप सबके प्रोग्राम और आपके ही फेवरेट सॉन्ग्स।
1: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: दिलों की आवाज,
1: सात बजकर 7:43 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हुए हैं अपने ही फेवरेट प्रोग्राम के साथ दिलों की आवाज, और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो कुछ लोग इस समय किसी खास को याद कर रहे होंगे, और वही एहसास जो है ना इस रात को खूबसूरत बनाता है, और साथ में जब गाने भी आपकी पसंद के होते हैं तो ये रात और भी सुहानी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपके गाने तो चलते हैं साथ में उसके इंसान की याद भी आती है जिसके लिए आपने ये गाना चाहा होता है कि हम चलाएं और आप सुनें, तो आप उसको याद करते रहें साथ में। चलिए दो तीन मैसेज ले लेते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं ललित जी यूएसए से, और कह रहे हैं कि भाई हमेशा तो मैं मैसेज करता हूँ पर आज मैं किसी और के लिए नहीं, अपनी सिस्टर निर्मला यानी नीरू के लिए करना चाहता हूँ, और उतना कहना चाहता हूँ तुम मेरी जान हो, क्योंकि तुम दोनों बहनों ने मुझे बहुत संवारा है, बहुत सारा गुस्सा किया है, डांटा फटकारा है, पर इतना कहूँगा कि मोटी हैप्पी बर्थडे टू यू। और थैंक यू सो मच ललित जी, आपने इतना प्यारा सा मैसेज भेजा, और हम भी यही कहेंगे नीरू आप हमेशा खुश रहो, हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ऊपर पहुँचो, अपनी फैमिली को देखो, अपने बच्चों को देखो, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में हमारे साथ जुड़े

0: और मामा प्रभा और भोला फैमिली के लिए मैं कर रहा हूँ, और आरजे हंसनी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहता हूँ, बट स्पेशली अर्ज कर रहा हूँ आयशा के लिए। मोहब्बत भी हम एटीट्यूड से करते हैं, मोहब्बत भी हम एटीट्यूड से करते हैं, जिसको चाहा उसी पे मरते हैं, ज़रूरत नहीं है किसी और पसंद आने की, जो पसंद है हमें वही हम पे मरते हैं। सो नाइस, और ये तो बहुत ही प्यारी सी कहते हैं गजल बन सकती है, पर इंजॉय कीजिए आपके गाने।
1: RM3 Radio.

सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: टाइम चेक शाम के 8 बज रहे हैं
1: Center 95.5 North South 95.6 East West

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: इस समय आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं और साथ में बहुत सारे प्यारे प्यारे जब मैसेज भेजते हैं तब मुझे दिल भी खुश होता है कि हाँ रे सब लोगों को कितनी उम्मीद होती है उनके गानों की, उनके मैसेजेस की। तो चलिए चलते हैं एक दो मैसेजेस की ओर। ललिता जी जुड़ी हुई हैं और सुदेवी जी, देवीना, ज्ञानी दीदी, छोटी दीदी, प्रभावती, हरीश भैया, आत्माराम भैया, सुखलाल मौसी के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं। साथ में एक और ललिता जी हमारे साथ में और कह रही है मेरे ग्रैंडसन्स जो कि बहुत ही हैंडसम है, वरुण, गणेश, अंश, प्रवन, जो कि उनको कहना चाहती हैं कि जब जब तुम मेरे आसपास रहते हो ना तो मुझे जीने का दिल करता है, जब तुम मेरे आसपास नहीं होते तो मेरा दिल ना थोड़ा सा रुक सा जाता है, तो बस मेरे पास रहा करो। सो नाइस, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि सबका ऐसा ही दिल करता है। साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रकाशवंती जी जो कि बेल्जियम से, और वो भी एक गाने की फरमाइश कर रही हैं और सभी को कह रही हैं कि मौसम थोड़ा सा अलग सा हो गया है, तो सारा सब लोग मॉरिशस में अपना ख्याल रखिएगा। और सच्ची बात है, गर्म गर्म वो कह रही हैं दूध पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, ब्लैक टी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए भाई, ये प्यारे प्यारे से मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में सूरज शर्मा साजदा जी भी हैं और वो कह रहे हैं अपने बेटे के लिए कि हाय रे तुम्हें क्या पता कि तुम कितने अनोखे और इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए, मेरी आंखों में तो तुम ही बसते हो। तो इन्जॉय कीजिए आप सब अपने गाने।
2: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 8:19 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हुए हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और कहते हैं ना, जो लोग इस समय सफ़र में हैं, उम्मीद है उन्हें ये धुनें पसंद आ रही होंगी और आपका साथ निभा रही होंगी। संगीत के साथ भी एक अलग सा ही लगाव होता है, जब आपके अपने पसंद के गाने चलते हैं या आपकी किसी को याद आती है और वो वाले गाने जो उस पल आपने उनके साथ कभी सुने होते हैं, चाहे किसी गाड़ी में ड्राइव करते हुए या कोई फेवरेट मूवी देखते हुए, तो आप

0: को वो पर्सन भी याद आता है और वो गाने भी याद आते हैं, वो धुनें भी याद आती हैं, और वो कहते हैं ना कि वो हर याद जो होती है ताज़ा हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ मैसेज पे और कॉल्स पे जुड़े हुए हैं और साथ में कह रहे हैं अपना मैसेज। चलिए भाई चलते हैं उस मैसेज की ओर जो कि अंतिश ने भेजा है स्विट्ज़रलैंड से, और कह रहे हैं इतना ही कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ स्वेनल को कि तुम जब आओगी तब मुझे स्विट्ज़रलैंड अच्छा लगेगा। अभी तो सिर्फ मैं अपनी आँखों से ये ज़मीन और ये हकीकतें देखता हूँ, पर जब तुम आओगी तब लगेगा, एहसास होगा कि ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है और ये घर और ये स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा है। सो नाइस ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच अंतिश आपका इस मैसेज के लिए। साथ में स्वेनल भी साथ जुड़ी हुई हैं और सभी को कह रही हैं जो इस वीकेंड में शादी करने वाले हैं उनके लिए भी यही कह रही हैं कि बस हमेशा खुश रहो। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स और विशेज ही दे सकते हैं, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि हमेशा खुश रहो। और भाई श्रवण, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान, नव्या और तुगलक फैमिली को, और स्पेशली आरजे हंसनी को, हाय रे क्या बात है, आरजे हंसनी बहुत लकी हैं जिनको बहुत सब प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। तब तक चलो इन्जॉय करते हैं ये गाना विवाह मूवी से आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़, की आवाज़, दिलों की
1: आवाज़। कहते हैं कुछ रिश्ते आवाज़ से नहीं एहसास से जुड़े होते हैं और वही रिश्ते सबसे खूबसूरत लगते हैं। तो आपका जो रिश्ता मेरा और आपका है, ये गानों का और ये मैसेजेस का, कॉल्स का है। तो ये बस आप ऐसे ही अपने मैसेजेस भेजते रहिए और हम आपको सुनाते रहेंगे आपकी पसंद के गाने। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रिहाना और वो भी बहुत ही प्यारे से मैसेजेस करती हैं और हमेशा यही कहती हैं कि सब खुश रहें। और मैं जब सबको देखती हूँ कि सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं तो मेरा भी आज दिल कर रहा है कुछ सुनने का। तो हम रिहाना आपकी पसंद का एक गाना चलाने वाले हैं अगला। और उसके साथ में ही मनीषा जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मेरे सारे लवली चिल्ड्रंस वैष्णवी, तुशीना, अंशिका, आशना, वरुण, गणेश, अंश, पवन के लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाएगा, क्योंकि ये प्यारे से बच्चे हैं, गलतियां बहुत करते हैं, पर जब ये सामने आमने होते हैं, प्यार से बात करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सच बात है, बच्चों को गलतियां करने देना चाहिए, क्योंकि गलती नहीं करेंगे तो एहसास कैसे होगा। माँ बाप के रहते रहते गलती करें और उसके बाद उसको समझ भी लें और ठीक भी कर ले, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये समय आपका है, एंजॉय कीजिए अपने गाने। और साथ में इतना ज़रूर कहूँगी कि रात है बट अपने लिए एक कंफर्टेबल नींद लीजिएगा, बिल्कुल किसी भी तरह की टेंशन नहीं रखिएगा, बस हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। गाने आप सबकी पसंद के।
0: RM3 Radio.

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: RM3 Radio.
1: यही तो है वो, यही तो है।

0: दिलों की आवाज।
1: 8:53 हो चुके हैं दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त है। उम्मीद है आज की रात और ये गाने आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जहाँ रात है वहाँ के लिए गुड नाइट, और जहाँ सुबह हो रही है आज अपना दिन बहुत खूबसूरत बिताइएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट। और ये आखिरी गाना, सारे गाने तो आपके पसंद के होते हैं, ये आखिरी गाना मेरी पसंद का आप सबके लिए।
0: RM3 Radio.

0: टाइम चेक रात के 9 बज रहे हैं।
1: दिलों की आवाज़

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का
3: तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
4: गमन जलसा हंगामा।
5: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे NBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का।

बल बाते भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के दिल से स्वागत बा। सब कोई के साथ देवधवन रत्ना सप्रेम नमस्कार स्वीकार करला अभी से लेके रात के 11 बजे ले सब कोई के साथ देवे खातिन चलाल हाय रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन हमनी के संगे जुड़ गल हवन आप सब कोई के दिल से स्वागत बा। आशा कर अब जाके जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हो आप सब कोई मजे में हवन और ही मजेदार कार्यक्रम संगे बहुत ही प्यार से जुड़ गल हवन। तो चला आज के कार्यक्रम बहुत ही मजेदार बनावब आप सब कोई के पसंदीदा गीत के संगे और जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के तो जरूर हमने के टेलीफोने करिया 4028085। जी हाँ 4028085 नंबर बा रेडियो मॉरिशस के और साथ ही साथ मिसाज बिदा खरे कातिन निमेगो बाते 5251700 साथ देते रहिए जा मजेदार कार्यक्रम संगे। और आज के कार्यक्रम बहुत ही धमाकेदार गीत के साथ शुरू करब जा कुणाल बाबूलाल के आवाज में रखल आज के है पहला गीत।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला रात के 9:10 हो गल बा। आओ रेडियो मॉरिशस पर आप सब कोई के साथ देवत है। और आज के जन पहला पसंदीदा गीत है चाची ललिता खातिन चलाओ अब जा। चाची ललिता कुशल हमनी के साथ देवत हवन त्रियोले से। और अगला गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन, उनकर सब बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी साथ देवत हवन छोटी और दादी प्रभावती और भैया हरीश भैया आत्माराम माला राम जावन और सुखलाल मौसी खातिन। लागी नहीं छूटे राम के है अगला गीत के साथ। आगे बढ़ब जा बढ़िया चुटकुला सब कोई खातिन। चाचा तो जानत हो ना बिना बात के कहाँ कहाँ से कौन कौन बात खोज खोज के आन देवेला। हमनी के चाचा बोले लोग बोलेलन कि हाँ जोन जोड़ी बनेला वो आसमान में ऊपर वाला बनावेलन। तो हम बोलनी हाँ चाचा हम भी सुन ले हैं सबको सब बड़ा आदमी हैसने बोल ले बाकी जब जोड़ी बनेला तो ऊपर वाला बना के विदा करेलन स। बोले हाँ पर जानत हर तोहर जोन चाची है हमर भुड़िया हाँ ओकरा देख के तो बुझाला ऊपर के काम भी तनको ढंग से नहीं होला। का हो चाचा ऐसन बोलत हव। चाची कितना प्यार से तोहर खातिन तोहर खाए के पकावेलन स तोरा इतना नीमन से रखेलन स काहे ऐसन बोलत हव हो।

पुरी टंका। चला रात के 9:15 और ये अगला गीत जोन हाजू बेदाल तो लेके जाए और हाई जोन गीत रंभा राम तोहल के आवाज में रखा लेगो बहुत ही प्रचलित गीत और हाई गीत के मांग करत हवन भाई आबू संगे हवन आफेज और उनकर सब नाती पोता असलम आया जायान

तहिरा रईस, खाला छोटी और उनकर खास संगत या हवा नापी और उनकर पत्नी चला जुबेदा लुतु लेके जाए है गीत रंभा राम तोहल के आवाज में रखल उनकर परिवार खातिन कर अब जा और चाचा के का बोला अब जब कबो बात करे लंस तो कहाँ जाके कहाँ से का कौन बात जोड़ देवे लंस कौन दिन पप्पू के बहुत ज्ञान देवत रलन पप्पू भैया बोले चाचा हमने के एगो बात बताओ भाई जब चोट लग जाला घाव लग जाला तो काहे सब कोई बोले लंस हल्दी लगावे के तो बोले हाँ जब हल्दी लगाई बा तो दर्द तनी कमती होला हवे से तब पप्पू भैया बोले हाँ तो शादी के अगाड़ी काहे हल्दी लगावे लंस तो चाचा बोले हाँ जीवन में तोहरा बड़का चोट लगे के बा ना बड़का घाव लगे के बा हवे से पहले से तोरा हल्दी में डूबा डूबा के निया निया के बिजा बिदा करत हवन तब बोले काहे झूठ बोला था वा चाचा हमर त शादी होल उ दिन से हमनी के जितना दर्द बढ़ गल बा सगरो हमर हमर जन बुढ़िया है जितना काम करावे लंस लुगा धोआवे लंस झाड़ू लगावे लंस हाई जितना दर्द होला हम का बोलब

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत है यावरी चला खुशनुआ से हईजा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन निमन परिवार से नीला जी और उनकर सुपुत्री सुनीता सुनीता रामदीन। चला नीला जी के जन्मदिन रहल 8 मई के यानी के काल और सुनीता जी के जन्मदिन रहल 7 मई के। तो चला बहुत बहुत धन्यवाद आई टेलीफोने करे के और ही हमनी के जनाई के और हमर पूरा टीम बगल से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई देवत है। खासकर नीला जी तोहर पति संगे हवन बेटा हवन नवीन पतो हवन पूनम संगे हवन कृषि और कीर्ति याशना और शिक्षा और दुगो दामाद बाबू की ओर से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई एक बार फेरों से हमार पूरा टीम देने से तोरा जन्मदिन बधाई और बसंत सुपोल के आवाज में रखल है गीत दोनों खातिन करब जा। तो चला आज के चुटकुला तो नहीं सुनैले है पर जन्मदिन के है गीत तोहर खातिर

चला जन्मदिन के अवसर पर चाची शांता सुकागी हमने के बोले हाय गी चला द हमर खातिन हमर बेटा सुजीत के जन्मदिन है और उनकर बेटी परी श्रिया उनकर पत्नी पूनम और सब सुकागी परिवार की ओर से जमील फॉरेस्ट साइड से साथ देवत हवन हाय गी सुजीत भैया खातिन।

0: पूरी टंका।
1: भाई जन्मदिन एगो बहुत एक खास दिन है और हर दिन पे कोई तोहर खाती ने को गीत मांग ले तोहर नाम गाजो पे चल जाए बहुत खुशी मिलेला। तो चला आज के दिन खास कर जेकर जन्मदिन बा और जे तोरा याद करेलन स दिल से प्रार्थना करेलन स तोहर खातिन के तू हमेशा सेहतमंद रहिय बहुत नीमन से जीवन बिताइय अपन परिवार संगे और जितना संगतिया साथ देवेलन स एगो बहुत खास दिन हो जाला। तो चला एमबीसी के पूरा टीम देने से जितना कोई जन्मदिन मनावत हवन बस साथ देते रहिए जा और ही जे तोरा मन बा कोनो परिवार खातिर गीत खा मांगे के तब बेझिझक हमनी के टेलीफोने करे सकब 4028085। रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलाता रेडियो मॉरिशस और ही रेडियो मनोरंजन पर। तो चला आज के जो अगला गीत है और हाई गीत रूपा जी मंगले हवन फोन जू साक से और हाई गीत चलाओ अब जा सुनीता ननकू के आवाज में रखल और उनका सब परिवार खातिन और खास कर जितना कोई रात के काम करत हवन उनका जितना संगतिया हवन और खास कर एमबीसी के स्टाफ खातिन बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। और चला हाईजा पर बादवाग विदेशी जी भी संगे जुड़ गल हवन अभी रात के काम करत हवन और उनका खास दोस्त अनुषा केतन खातिन ये गीत कर अब जा। और हई गीत है चिड़ै बोले चुक चुक रात के तो चिड़ै नहीं बोलेला पर चला हई गीत के संगे संगे मजा उठाओ अब जा हई गीत के और ही का बोलब जा चचा और चाची के किस्सा। चाची हमनी के बोले आ पसंदीदा पति से के मांग कर ले रही पसंदीदा पति तो मिल गर पर अब हमनी के तन को पसंद नहीं आवता। हम बोले का है चाची कहा बोला पूरा दिन तो बैठ के पोताप में देखेलन सा और जब पोताप बंद करे के बोली ला तो पुनारिये के हमनी के ज्ञान देवेलन सा ऐसा बुढ़वा केकर पसंद होई हो

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आगे बढ़ावत है और रही जा पर शांति जी हमने के साथ देवधवंती अगूश से दागोचिया से उनका जितना मराठी परिवार हवन और खास कर उनकर भगीना ओम जे अप्प दागोजिया से हमेशा हमने के साथ देवेलन उनकर खाती अगला गीत के मांग कर ले हवन महेश विश्वजीत के आवाज में रखल और हाई गीत खास वो बोले हमने के रत्ना जी है तोहर खातिन भी तनी चला दिया तो काहे नहीं हो है जा पर बैठ के तोरा मेट्रो के सफर कराव मेट्रो एक्सप्रेस में घुमाव तनी तो चला अगला गीत तोहर खातिन चलाओ अब जा और चचा चाची के किस्सा में चचा के तका जनी कहाँ से बैठे बैठे ऐसन सब नींदे मिलेला हमनी के बोले जाने ल पहला के जमाना में पहला एक एको आदमी कमावत रहलन घर के और नौ जन नौ दस जन खात रहलन और हये खातिर ओकरा नौकरी बोलत रहलन और बाद में एगो ऐसन समय चलाल जब एक गो आदमी कमावत रहलन और चार गो आदमी खात रहलन हवे से ओकर नाम पड़ल चाकरी फिर ओकर बाद ऐसन समय चलाल कि जितना कमावत रहलन बस खुद के तन ढके खातिर कमावत रहलन हवे से नाम पड़ल तनखा और ऐसे ओकर बाद में ऐसन समय चलाल जब तन के भी कम पड़े लगल तब नाम पड़ गल ओकर वेतन और आजकल तो छोकरा छोकरी लोग बस सेलफोन लेवे खातिर काम करेलन सा वैसे ओकर नाम पड़ गल सैलरी

पोटपूरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आगे बढ़ाव अब जा और आज आशी हमनी के साथ है देवथवन बुब्बास है बगल से वो अपन दादी बाबिन हिया घूमे आल हवन संगे हवन दादी सूर्यमती दादी रेशमी पुपु आरती पुपु अनसुया पुपु दीक्षा और आज उनकर पुपा सुभाष के

तो चला फूफा जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत खुशियाली परिवार संगे बस झूमते रहिए नाचते रहिए जैसे हमर चाची चमेली करेलन सा जानत हवा चाची चमेली कौन दिन हौ गुलाम के गीतवा गात रहलन बोले घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे फिर एक कुछ चुप हो गल तो हम बोली का हो चाची कैसे आरते कर देवा कर देला हवा आई गीतवा पूरा कर फिनी कर तो बोले हाँ जानत हवा हमर बुढ़वा हम हमनी के ना घुमाए के लेके जाला ना कहूँ लेके जाला हम बोली काहे हो बोले हमर बुढ़वा के पास टाइम नहीं बा पूरा दिन बैठ के हाई पोताप में रील देखेलन सा का बोला

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला बुआ शेरी बगल से हमने के हई गीत के मांग कलेहवन फूलो और अमिता और हई गीत हा अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल आइयो ध्या के राज

ऐसा चला रात के 9:55 हो गल बा और ये अगला गीत जो है हाई चलाओ अब जा अनीता जी खातिन अनीता जी माफी मांगत है कहे कि तू बसंत सुपोल के आवाज में रखल मोमबत्ती हाई जो हैप्पी बर्थडे के गीत रहल उ मंगले रहल पर हमने के मेसाज अनीता आरदे मिलल तो चल तोहर खातिन एगो और जन्मदिन के गीत चलाओ अब जा और है गीत आज तोहर भाभी या तोहर भौजाई के सालगिरह बा जन्मदिन के उनका नाम है चंदा और चंदा ईतू परिवार से हवन उनका पति हवन संजीव उनका सब लैकन हवन खुशी दीपशिका दिशा और साथ हवन केशवीर गोगा परिवार नागेश्वर परिवार और सब कोई परिवार संगे उनका बहुत बहुत बधाई देवत हवन तचला एमबीसी देने से चंदा जी के जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई और हई जन्मदिन के गीत हम डालत हई खास कर उनकर खातिन तचला खुश रहिए हमेशा स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हई गीत संगीत तोरा बोलब जा हैप्पी

0: रोमांचक भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर। भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का रात के 10 बज गल बाते और ये गो और घंटा रह गल बा पर कार्यक्रम बहुत मजेदार चला था और बढ़िया बढ़िया गीत संगे जितना कोई श्रोता लोगन साथ देवत हवन बस प्यार से साथ देते रहिया जाए गो और घंटा में तोहर मनोरंजन तोहर पसंदीदा गीत के साथ करब जाता चला। अगला जन पसंदीदा गीत है चलाओ अब जा सुदेवी जी खातिन जितना प्यार से वो हमनी के साथ है देवेलन सा और है गीत करब जा सुदेवी जी जे अभी वाकवा से साथ देवत हवन और उनकर बहिन ललिता कुशल त्रियोले से और मलेगा के सब राम रतन परिवार खासकर वंश वैभव वीर वर्षा विमल निया और जितना कोई सुना थवन उन सब कोई खातिन विनोद शिवदत्त के आवाज में रखल है अगला गीत चलाओ अब जा। तो चला मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा और ही हंसते मुस्कुराते बस ऐसने आगे बढ़ब जा। कौन दिन पप्पू भैया चचा के बोले चचा हम सुन ले हाई आई जोन प्यार है वो सरदर्द है। तो चचा एगो बात पूछे के रहल है प्यार जे सरदर्द है तो शादी का है। तो चचा बोले शादी है जोन शादी है का बोलब शादी है बवासीर है हाई में तो तोहरा जितना दर्द हो बस बर्दाश्त करते रहिए ऐसा दर्द तोहरा मिली कि तू कोई के बतावे नहीं सकब समझ गई ल। तो शादी करे के अगाड़ी सोच लिए

पोटपूरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और अगला गीत जो हम आंटी जी पसंद कर ले हवन नुवेल फॉस से उस साथ देवत हवन और उनकर बहिन हवन अनंती आरती उनकर कुजीन हवन अमृता और साथ देवत हवन ओलिविया से चिंता जी। तो चला लीलो माथुर सुकन के आवाज़ में रखल है अगला गीत करब जाओ उनकर खातिन उनका सब परिवार खातिन और मजेदार कार्यक्रम भोजपुरी तड़का जे चलेला रोज रात के 9 बजे से 11 बजे ले। तो आगे बढ़ब जा पर आगे बढ़े के अगाड़ी सुनावब जा चचा चाची के किस्सा। जानत हवा कौन दिन चचा और चाची चल गल शिवाला। जब चचा पूजा करके बाहर चला तो चाची से बोले कौन ची मंगलक भगवान से। तो चाची बोले हाँ हम मंगले हैं कि पूरा सात जन्म तो हर साथ हमनी के मिलते रही। और चाची बोले तू का मंगले हो। तो चाचा बोले हाँ हम मंगली है जन्म आखिरी होई सातवा जन्म है हो।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जा पर उमा जी हमनी के संगे हवन फूजू साक से और लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल है हरदी के गीत मंगले हवन उनकर सब परिवार खातिन।

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार गीत संगे हई जन गीत रहल बहुते अद्भुत बहुते मजेदार गीत और लीलो माथुर सुकन के आवाज में गावल है गीत के संगे चला आगे बढ़ब जा। और अगला गीत जन है छोटी पुलाव जैसे साथ देवत हवन और है अगला गीत के उ मांग कर ले हवन दीदी ललिता खातिन भाई हरीश भाई आत्माराम खातिन जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन संभावती दुपन के आवाज में रखल है गीत और संगे संगे पप्पू भैया के तो हई किस्सा सुना पप्पू भैया जाना था वो पढ़ लिख कर बन गल दौचिस पर बुड़बक के बुड़बक कौन दिन चचा गल हुआ दौचिस यानी पप्पू भैया हुआ दांत कबारे खातिर काहे के दांत सड़ गल रहल तो जैसे हुआ गल तो पप्पू भैया बोले हाँ चचा मुँह वा उघाड़ हम जानत हव तोप के दौचिस बन गल है तू देखिए नीमन से तोहर दांत देख के कबाड़ देवब तो जैसे वो दांत कबाड़े के रहल बोले चचा बोले हाँ है जो दांत है बहुत दुखाता लाहो के जो दांत है वो सड़ गल बा तो पप्पू भैया बोले हाँ चचा त्राका नहीं करे जिस मुआ उघाड़ ना मुआ जैसन उघड़लग तो देखते देखते जानत हवा चचा के नीचे के दांत जो है वो कबाड़ देलग तो चचा बोले अरे बुढ़बा कौन चिकलग है हमार ऊपर के दाँत सड़ल रहल तो नीचे के दाँतवा काहे कबड़लग बोले नहीं जानत हवा तू चचा हम दौचिस बनल हई जानत हवा है जोन कीड़ा है जोन नीचे का दांत है ओकर पे खड़ा रह के वो तोहर लाहो के दाँतवा सड़ा देलक अब नीचे के दांत जब हम कबड़नी तो कीड़ा कहाँ खड़ा रही सोचा तू ही सोचा हये से हम नीचा के दांत नीचे के जोन दांत रहल वही कबाड़ दिली अब न रही दांत न रही कीड़ा चचा बोले हाई बुढ़पा के बना दिलक दौचिस

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे चला के आगे बढ़ब जा और अगला गीत जन साजी जी खातिन चलाओ अब जा रोज हिल से साथ देवत हवन और उनकर खास सखी हवन दीना सरोवर तो चला हाइये गीत करब जा नीता जी खातिन नीता के दिन हमनी के संगे जुड़ गल हवन से जुलिया विलास से बस ऐसे साथ देते रहिए बहुत प्यार से और बढ़िया बढ़िया गीत संगे सब कोई के मनोरंजन करे खातिन का बोला बढ़िया से बढ़िया चुटकुला भी तो सुनावत हई और हंसते मुस्कुराते बस ऐसे आगे बढ़ते रह साथ देते रह और मजेदार कार्यक्रम संगे चलम बढ़िया बढ़िया गीत चलावत हई और साथ आगे बढ़ते बढ़ते बस हंसते मुस्कुराते उसने साथ देते रहिए जा और चला सुना जा अगला गीत जो हा लगा लुई फ्रीमान के आवाज में और का बोला बबी जानत हो ना सब कोई लागिप के कारण वाक्सें करावत हवन तो हमनी के जो चचा है वो भी गर्ल वाक्सें करावे खातिन लागिप के वाक्सें करा के जब अलग तो ऐसे मुस्कुराते चाची के बोले जानत हव वाक्सें लगा के ऐनी ऐसा नस रहल ऐ जो नेस रहल।

पल हमनी के पिकिया करा देली तो पिकिया करा के तन को नहीं दुखाता ओकर हाथ में जैसे जादू रहल तो चाची अंदर से बोले हां दूसर औरत के सुई हाथ के सुई लगल त नहीं तन को चुभल और हमनी के तब बतवा तोरा चुभेला हां

0: पुरी चड़का।
1: चला बिलिया बगल से भाई आत्माराम भी हमने के साथ जुड़ गर हवन। और अगला गीत दाना जी नाव जी के आवास में रखल और हाई गीत दादी प्रभावती खातिन और संगे हवन दीदी लालिता और छोटी खातिन और उष्णु परिवार जे हमने के साथ देवत हवन बिलिया की व्यशस से। चला भाई आत्माराम तोहर खातिन बहुत बहुत प्रार्थना करब जा कि तू जल्दी से अच्छा हो जाइय, तोहर स्वास्थ्य निमन हो जाए और बस हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 10:35 हो गल बा और अगला गीत तोहर खातिन करब जा दाना जी नाव जी के आवाज़ में।

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का और एक संगे संगे हाईजा पर पंडित राज वर्मा भी हमने के संगे जुड़ गल हवन पे चितकाफ से और बहुत मजेदार चुटकुला संगे बहुत मजेदार के साथ कार्यक्रम सुनेलन सर चला उनका पूरा परिवार उनका सब परिवार बड़ुआ परिवार खातिन चलाओ अब जा अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में रखल है अगला गीत हमर 20 के पास बा

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 10:44 हो गल बा 11 बजे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चली रेडियो मॉरिशस सॉरी रेडियो मनोरंजन पर चला अगला गीत जो है गायत्री जी खातिन चलाओ अब डानू अल्फांस से जुड़ गल हवन बेटा जय मामी कल्याणी मोहन भौजी हवन शकुंतला जी मोतायलोंग से और खास सखी गीता बाई खातिन और हई गीत है मीरा मोहन के चट्टनिया।

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में चल रहा था जी हमने के जुड़ गल हवन सैतौतगे से औरी हमने के बोले जानत हव दूगो पुलिसिया एक ऐसा काम कर दिलक जेकर से हमर जो देश है ओकर नाम रोशन हो गए सच्चे के जितना नारी लोग हवन जितना सुनत हवन बस हमनी के बहुत बहुत सम्मान दूगो ऑफिसिया खातिर जे एगो ऐसा कमाल कर दिलक और अगला गीत राधा जी के ओर से उनकर खातिर चलाव जा और है जो गीत है रवीन कुमार रामौता की आवाज में

चला है ये गीत के साथ जितना नारी हवन सब कोई के वंदन करत है और नालिनी जोखन हमनी के संगे जुड़ गल हवन वाकवा से और अगला गीत है सोना नयन के आवाज में रखल है गीत शोभा जी मांग कर ले हवन कथ बो उनसे उनकर सब परिवार खातिन जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई खातिन और बस बोकवास बुलब जा जितना कोई सुनत हवन हमनी के दादा

चला एकर संगे हमनी के भी घरे जाए के समय होगल बादे। आप सब कोई अपन ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देलन ना हमनी के प्यार से। फ्लोरियाल से वीना जी हमनी के संगे जुड़ल रहल और गांव गोब से सुनीता जी हमनी के साथ देलन, उनका तीन गो बहिन विमला, वीना और अमृता, और हैजा पर कौंडमास से हमनी के साथ दिलन विश्वानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और लक्ष्मण परिवार लाफ्लोगा से जुड़ गल हवन हमनी के संगे राजन लक्ष्मण जी, उनकर पत्नी माला, दूगो बेटी प्रार्थना और प्रगति। चल बहुत बहुत धन्यवाद और एक संगे है आखिरी गीत रही श्वेता बाबूलाल के आवाज में रखल। और आप सब कोई बस दिमास के दिन परिवार संगे निमन से बितैया, अपन ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आवत सामदी के फेरों से भेटा आप सर रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, शुभ रात्रि, नमस्कार।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतू शाह का कर जोर प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस दिन कैसा रहा आपका? सब कुशल मंगल? तो ये रात्रि आपके लिए शुभ हो, यही कामना करते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत सुनहरे पल कार्यक्रम में।

श्रोताओं, आज जिन कलाकार के बारे में हम बात करने वाले हैं, बॉलीवुड की दुनिया में अगर किसी एक्टर ने अपनी दमदार आवाज, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और एक अलग ही अंदाज से लोगों के दिलों पर राज किया है, तो उनमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम बहुत ही इज्जत और शान के साथ लिया जाता है। उनका फिल्मी सफर सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिन्होंने अपनी मेहनत, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी के दम पर बॉलीवुड में एक खास पहचान बनाई। उनका फेमस डायलॉग खामोश आज भी लोग बड़े स्टाइल और अदब से याद करते हैं। तो आइए आज इस महान कलाकार की दुनिया में

शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। वो एक सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन बचपन से ही उनके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी FTII में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। वहीं से उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी और बॉलीवुड में कदम रखने का सपना पूरा करना शुरू किया। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

अपनी पहली फिल्म की शुरुआत 1969 में की और पहले कई फिल्मों में विलन या सपोर्टिंग रोल्स भी निभाए, लेकिन उनकी पर्सनालिटी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि धीरे धीरे वो हीरो के रूप में भी बहुत पॉपुलर चर्चित हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा उन एक्टर्स में से थे जो स्क्रीन पर आते ही पूरी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही दम था और उन और डायलॉग बोलने का स्टाइल तो बिल्कुल यूनिक।

1970s और 1980s के दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कालीचरण, विश्वनाथ, दोस्ताना, शान, नसीब और काला पत्थर। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और इमोशनल रोल्स में भी अपनी जबरदस्त वर्सटैलिटी दिखाई। उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री उस दौर के कई बड़े स्टार्स के साथ बहुत पसंद की गई।

शत्रुघ्न सिन्हा का एक्टिंग स्टाइल बहुत ही पावरफुल और स्टाइलिश माना जाता था। वो ट्रेडिशनल हीरो की तरह सिर्फ रोमांटिक इमेज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक बोल्ड और फियरलेस पर्सनालिटी के साथ ऑडियंस के सामने आए। उनका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी उन्हें दूसरे एक्टर से बिल्कुल अलग बना देता था। जब वे स्क्रीन पर डायलॉग बोलते थे तो उनकी आवाज और अंदाज सीधा दिल पर असर करता था।

लोगों को पता नहीं कि उन्हें बॉलीवुड के शॉटगन के नाम से भी जाना गया, जो उनकी एनर्जेटिक पर्सनालिटी और धमाकेदार एक्टिंग का प्रतीक बन गया। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विलन के रोल्स करते हुए भी लोग उन्हें हीरो की तरह ही पसंद करने लगे थे।

वैसे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा को कई फिल्मफेयर नॉमिनेशंस मिले और उन्हें इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान भी बहुत मिला। फिल्मों के अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और देश के कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी खुलकर राय रखते रहे। एक्टिंग और पॉलिटिक्स दोनों फील्ड्स में सफलता पाना उनकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ को दिखाता है।

उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही। उनकी शादी एक्ट्रेस पूनम सिन्हा से हुई और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भी बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी शत्रुघ्न सिन्हा को बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और कैरिस्मेटिक एक्टर्स में गिना जाता है।

शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान में टैलेंट के साथ कॉन्फिडेंस और हिम्मत हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही सकता है। उन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दी बल्कि एक ऐसा स्टाइल और एटीट्यूड भी दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। उनका नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में हमेशा चमकता रहेगा जिन्होंने अपनी आवाज और पर्सनालिटी से एक अलग ही इतिहास रचा दिया।

0: जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं।
1: This is Radio Voices.
2: 您好
3: ，Assalamualaikum. Welcome to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudhendra ki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: ओ हीर की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
2: So what?
1: और हीर ता फिर दी शॉपिंग कर दी।
2: Big deal, dude.
1: हीर ता फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
3: मैनू नी चाहिदा कोई राजा, नाराजे दी यारी वीरे, मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।
4: हाय चुकला रब्बा, मैनू
3: मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।

चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमके चल जरा लचक लचक के जरा मटक मटक के लट जा

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती।